सुप्रभात, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 12 सेकंड हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।

0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on

0: www.ddindia.com।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है। और अब प्रस्तुत है आराध्य की आराधना में आज की वंदना।

जगत जननी माँ जगदम्बा श्रम और उद्यम की अनुगामिनी हैं। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति के सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर का चैन नहीं रहता। गीता के अनुसार मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ सकारात्मक कर्म है। हे जगत जननी माँ जगदम्बे, आपको बारंबार प्रणाम।

0: ये थी आज की वंदना। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: देरी की सैर के समय एक दिन उन सज्जन से मुलाकात हो गई, जिन्हें देखना तो लगातार कई दिनों से हो रहा था, किंतु उनसे बातें नहीं हो पाई थीं। उस दिन बातों के दौरान ही मालूम हुआ कि उनकी उम्र लगभग 62-63 वर्ष की है। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके चेहरे पर इतनी अधिक उम्र के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। ये जानकर मुझे और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि वे एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। आश्चर्य इसलिए क्योंकि ये एक आम धारणा है कि आदमी रिटायर्ड हो जाने के बाद शिथिल हो जाता है, उसकी कार्यशक्ति क्षीण हो जाती है। यदि उसके पास कोई काम होता है तो वो ये कि वो बखान करता रहे कि उसने अपने सेवाकाल में क्या क्या किया। दफ्तर में उसके जैसा होशियार कर्मचारी कोई नहीं था। कोई भी अफसर बगैर उसके कोई निर्णय नहीं ले पाता था। हर अफसर उसी के सहारे ही काम कर सकता था। वो जो कुछ भी लिखता या सुझाव देता वही मान्य होता था। यहाँ तक कि यदि किसी समय वो नहीं रहता तो अच्छा खासा प्रशासन पंगु हो जाता। ऐसी ही अनेक बातों और डींगों का कभी ना समाप्त होने वाला सिलसिला। लेकिन रिटायर होने के बाद वही आदमी मृतप्राय हो जाता है और ये समझिए कि वो किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन इसके विपरीत ये सज्जन जिनसे मेरी मुलाकात हुई सक्रिय, प्रसन्नचित्त और उत्साही थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्मचारी जीवन के कार्यकलापों की डींग नहीं मारी। मितभाषी और नम्रता की प्रतिमूर्ति इन सज्जन से ये पूछने पर कि इतनी उम्र हो जाने पर भी वे दूसरे लोगों की तुलना में कम उम्र के और अधिक सक्रिय, उदात्त और प्रसन्नचित्त कैसे दिखाई देते हैं। मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उसका सार यही है कि दुनिया में हर स्थिति में अच्छी तरह जीने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इस दुनिया से जुड़ा तो रहे लेकिन उसमें डूबा न रहे। वो हर वस्तु का भोग करे किंतु उसमें लिप्त नहीं हो और वो सदैव लोभ और लालच से दूर रहे और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखे। दुनिया में दुखों का

0: मुख्य कारण आसक्ति, लिप्सा, लोभ और लालच है। आजकल की दिखावे की इस दुनिया में आवश्यकताओं की बहुलता हो गई है और साधनों की कमी। अवसाद और असंतोष का कारण मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं ही हैं। यदि इन आवश्यकताओं का परिसीमन कर दिया जाए और सादगी को अपना लिया जाए तो सारी समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। इस प्रसंग में एक कथा का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। एक साधु जंगल में एक कुटिया में रहते थे। जाड़े के दिन थे, साधु के पास सिर्फ दो कंबल थे। एक कंबल वो बिछा लेते और दूसरे को ओढ़ लिया करते थे। एक रात जब ठंड बहुत अधिक पड़ रही थी, कहीं से एक चोर आकर साधु की कुटिया में घुस गया। साधु को सोया हुआ देखकर वो साधु का कंबल उठाकर भागा। कंबल के हटने से साधु की नींद खुल गई। साधु ने देखा कि एक व्यक्ति कंबल लिए भागा चला जा रहा है। साधु दूसरा कंबल लेकर उसके पीछे पीछे भागे और चिल्लाते रहे कि ये दूसरा कंबल भी लेते जाओ। बहुत दूर निकल जाने पर चोर रुका और कहने लगा कि साधु बाबा, यदि तुमने मेरी कंबल वापस मांगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन साधु महात्मा सरलता से बोले, अरे भाई, तुम इस एक कंबल का क्या करोगे? इस कंबल को बिछा लोगे तो फिर ओढ़ोगे क्या? मैं तो तुम्हें ये दूसरा कंबल भी देने आया हूँ। साधु के इस व्यवहार से वो चोर हतप्रभ हो गया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने साधु से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? जरूर, साधु बाबा बोले, तत्काल मैं तुम्हें अपने जैसा बना सकता हूँ। उस चोर को साधु अपनी कुटिया तक ले आए और उसे वहाँ खड़े रहने का आदेश देकर खुद कुटिया के पीछे चले गए। थोड़ी ही देर में उस चोर ने देखा कि कुटिया जल रही है। साधु महात्मा वापस आ गए। चोर ने कुटिया जलाने का कारण पूछा तो साधु ठहाका मारकर हंसने लगे और फिर गंभीर स्वर में बोले, जब तक मेरे पास ये कुटिया रहेगी, मेरी संग्रह करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें।

हमारी आज की इसी सभा में आप सुनेंगे 7:30 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। सुगम संगीत का प्रोग्राम होगा 9:50 पर। इसमें आज के फनकार होंगे सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर। गाते गुनगुनाते फिल्म संगीत का आपका अपना कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी आज की इसी सभा में 10:05 पर। ग्यारह बजे लोकरंग कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे राधेश्याम मणि त्रिपाठी और फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से ही 11:30 पर। 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 12:30 पर आप सुनेंगे गीत सुहाने। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा 1:15 पर नारी जगत और 1:50 पर हम आपको सुनवाएंगे खेती किसानी कार्यक्रम में आज डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह से डॉक्टर विनय कुमार की बातचीत

विषय होगा बेर की उन्नतशील प्रजातियों की बागवानी। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 7 बजे आप सुनेंगे देश हमार कार्यक्रम, और इसमें आज हम आपको सुनाएंगे वंश बहादुर गुप्ता की भोजपुरी काव्य रचनाएं। लोकधारा कार्यक्रम होगा हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 6:45 पर। इसमें आज के कलाकार होंगे श्री चंद्र भान और इनके साथी। सात बजकर के 30 मिनट पर हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा में आज का गीतकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शकील बदायूनी के लिखे कुछ गीत। हिंदी कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर हरिओम मिश्र की वार्ता बढ़ते तनाव और घटती खुशियां। रात्रि 10 बजे से आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम, और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के श्रोताओं के लिए हम आज सुनवाएंगे पंडित अजय चक्रवर्ती की आवाज में ठुमरी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से पाठ।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से पाठ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक

0: पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
4: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
3: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक

0: क्षणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान

0: जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart, Dr. Naveen Chandram Gulam, in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi will inaugurate 2 major solar power parks in Madhya Pradesh's Neemuch and Shajapur today. Mr. Joshi, along with Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav, will launch a 500-megawatt solar park in Neemuch and a 450-megawatt solar park in Shajapur. State New and Renewable Energy Minister Rakesh Shukla will also be present at the event. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorn Deghbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. It added that the program will provide integrated home and community-based healthcare for children from birth to 3 years by merging the existing home-based newborn care and home-based care for young child

अभी आप सुन रहे थे मिली जुली आवाज़ों में देश गान। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स के साथ साथ FM 100.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:18 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से

0: प्रादेशिक समाचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री

0: पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर NOC की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
2: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुईं। कार्यक्रम में माँ बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी

आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मैटरनल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पेश है फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या

0: 2288-6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अजनबी में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया था आर डी वर्मन ने। फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: छलिया फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने और इसे संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: अरे ना ना ना ना।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। गीत लिखा था अनजान ने और इसे संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और फिल्म का नाम था नमक हलाल। फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के

स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार को। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत SD वर्मन का।

0: श्रोताओं, हमें खेद है ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सकें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का आज का अंक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता

0: बोलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।

0: पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी

0: बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Navin Chandra Ramgoolam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. In a statement, Foreign Secretary Vikram Misri said the honour has been conferred upon Prime Minister for his green leadership and efforts towards advancing the interests of the developing countries and his long-standing commitment towards promoting blue economy, climate action and sustainable management of ocean resources.
4: At the State House, in a special gesture, President Dr. Patrick Hermini conferred

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरक तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद खित्ते में एक अहम समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इयादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरक अहद का भी इयादा होता है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी

0: तय जनूब के तई अपने मुश्तरका अहद से भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमीनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ़ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े को हल करना है। ये ऐलान आबनए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने तजारती जहाज़ों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुज़ाकरात के दौरान इन जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासतों मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू और कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जदोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज GSFC यूनिवर्सिटी में 4थी दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वजरा और आलमी सिफारतकार इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खित्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकतदार मुल्कों के 151 माहरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़िराअत, खला, दिफा और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई MSMEs, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और GSFC वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से निश्र किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन 3 मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्विस हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए TET सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेन देन के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में 2 मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं।

0: टीईटी इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था, लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यकजा हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया, जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज़ और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मस्कूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीमुशान रथ यात्रा आइंदा महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के सैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माहे में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
2: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है, अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशीबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर ज़रूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाए अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, PM मोदी को सेशेल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा।

राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

दूसरों की खुशी का ध्यान रखना बताता है कि आप अपने संबंधों को महत्व देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद खुश नहीं हैं, तब तक आप किसी को भी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए सोचिए, आपको खुशी किस बात से मिलती है। म्यूजिकल दिल्लगी सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म अभिनेत्री में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: हिट सुपर हिट्स इस कार्यक्रम में अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको। फिल्म है राजा जानी।

उजाला फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम हिट्स सुपर हिट्स।

कश्मीर की गली फिल्म का गाना अपने आप अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा था SH बिहारी ने और संगीत दिया था OP नैयर ने।

दिल तेरा दीवाना। इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीत शैलेंद्र का था और संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारे ये कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज के साथ साथ FM 100.1 MHz पर 9:15 हो रहे हैं। अब सुनिए लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का।
1: जनपद हमीरपुर की राठ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 21 जून के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के तहत आए और उन्होंने जनपद हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं को 636.82 करोड़ की लागत की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री मुद्रा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कुल 12 लाभार्थियों को मंच से डेमो चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान और प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड के लोग पानी और रोजगार की समस्या को लेकर पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब नमामि गंगे मिशन जल शक्ति के चलते हर घर नल जल से जल मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक माह में कम से कम 4 बार रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नामी गिरामी कंपनियां प्रतिभाग कर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। बिना किसी जात मजहब को दरकिनार कर सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सौगात के तहत बेतवा नदी में 650 मीटर लंबा पीपा पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों को जाम की झाम से निजात के साथ 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी सहूलियत मिलेगी और कानपुर जालौन जाने में भी सहूलियत रहेगी। सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापत ने बताया कि मेरे द्वारा 4,16,00,000 की कार्य योजना बनाकर शासन को स्वीकृत के लिए भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है और मंजूरी मिल गई है। बरसात के बाद पैटून पुल का निर्माण कराया जाएगा। जनपद हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस को उत्साह और व्यापक जन भागीदारी के साथ राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम में मनाया गया, जहां बच्चे बूढ़े जवान सभी ने योग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, नोडल अधिकारी भूतत्व निदेशक माला श्रीवास्तव, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद सहित अन्य लोगों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल सांस्कृतिक धरोहर है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में प्रभावी माध्यम है। बुंदेलखंड के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधापूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए 31,48,00,000 रुपए की लागत से 2 भव्य व अत्याधुनिक छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावासों में रहने से बुंदेलखंड सहित अन्य जिलों के अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा की राह सुगम और आसान होगी। जनपद हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। वर्ष 2021 की अपेक्षा 2026 में लगभग 5% मतदाताओं की वृद्धि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद हुई है। 2026 की मतदाता सूची में 34,495 नए मतदाता शामिल हुए हैं, वहीं 4,556 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम डिलीट भी किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण डुप्लीकेट मतदाता सत्यापन

0: के बाद अब जनपद हमीरपुर की नई मतदाता सूची में 7,28,518 मतदाता हैं, जिसमें 3,26,350 महिला मतदाता और 4,01,762 पुरुष मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद हमीरपुर में 7 विकास खंडों की 330 ग्राम पंचायतों में कुल 524 मतदान केंद्र और 1214 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद हमीरपुर का किसान पारंपरिक खेती के साथ कैश क्रॉप की तरफ तेजी से रुझान बढ़ा है और फायदा भी मिला है। जिला उद्यान अधिकारी सौभाग सिंह ने बताया कि किसानों को भीमा सुबर प्याज की खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें निशुल्क प्याज का बीज दिया गया, जिससे किसानों ने प्याज की खेती करके नासिक प्याज के ऊपर निर्भर न रहते हुए अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं।
1: NHRDF द्वारा उपलब्ध उच्च प्रजातियां का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मुख्यतः एग्रीफाउंड लाइट रेड, भीमा सुपर, भीमा राज, भीमा शक्ति जैसी प्रजातियां किसान भाइयों को निःशुल्क दी जाती हैं, जिनका जमाव और उत्पादन दोनों ही बहुत अच्छा हुआ है।
2: हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
3: इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए DBA सभागार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी बीमारियों के एक दर्जन से अधिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने परीक्षण किया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज रजत सिंह जैन ने फीता काट कर किया। इटावा में 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित समारोह में 14 टॉपर्स को 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। अन्य मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन लखनऊ से लाइव प्रसारण को भी देखा गया। विधायक सरता भदौरिया ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो से पीता है वही दहाड़ता है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी छात्रों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सम्मान की सीख दी। इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक जनपद एक नदी, डिजिटल लाइब्रेरी, जीरो पॉवर्टी अभियान समेत कई योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सिरसा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए फिल्टर चैम्बर प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन में नए पात्रों को शौचालय से जोड़ने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालय बनाने को कहा। 117 डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी पुस्तकें रखने और जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को राशन हर घर नल का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इटावा में उद्यमी संवाद कार्यक्रम हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। इटावा के अंगोछा, बेडशीट, खीर मोहन जैसे उत्पादों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि ODOP योजना में 2000 लोगों को टूल किट, विश्वकर्मा योजना में 5,805 को प्रशिक्षण और युवा उद्यमी अभियान में 1,937 युवाओं को 74 करोड़ से अधिक ऋण मिला। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी युवाओं से नवाचार के साथ आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में लाभार्थियों को ऋण चेक और टूल किट वितरित की गई। इटावा पहुंची महिला कल्याण मंत्री बीबी रानी मौर्य ने केंद्र की 12 राज्य और 9 साल के सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, अपराधी जेल में है, महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने बड़ी पहल की है। DPRO रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांव में फिल्टर चैम्बर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। सिरसा नदी का जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से यमुना और सिरसा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और गांव का गंदा पानी नदियों में जाने से रोका गया है।
4: हमारे 10 गांव थे जिनका गंदा पानी जो यमुना नदी में जा रहा था, तो जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनमें हमने फिल्टर चैम्बर बनाए गए। 10 गांव जो हमारे थे कवर किए गए, अब उनमें जो है पानी साफ तरीके से लगभग जा रहा है।
3: जनपद इटावा में 285 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 21 राजकीय, 54 सहायता प्राप्त और 210 वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में 1,29,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद में 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। इटावा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,31,97,000 रुपए कीमत के मादक पदार्थ नष्ट किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 7 केसों से जुड़ा 1,772 किलो गांजा चरस डोडा कानपुर देहात के अधिकृत प्लांट में जलाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। इटावा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने यह कार्रवाई की। NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों पर पंजीकृत 7 अभियोगों से संबंधित कुल 1,772 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए। 12वें अंतरराष्ट्रीय

0: योग दिवस पर पहुंचे ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने नुमाइश पंडाल में पहुंचकर योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए यह प्रारंभ किया है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के बाद इटावा प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संगठनों और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कोचिंग मॉल और प्लाजा में फायर सेफ्टी मानकों का 100% पालन हो, शॉर्ट सर्किट रोकने को अच्छी वायरिंग MCB लगाएं। SSP ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
3: एक कदम बढ़ाएं,
4: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं,
3: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
4: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: अब प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 9:30 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे लखनऊ केंद्र से उर्दू प्रोग्राम।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामईन कराम, आदाब अर्ज़ है। मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ख़ान और आज के प्रोग्राम में आपके लिए पेश कर रही हूं एक दिलचस्प और सबक आमूज दास्तान, जिसमें इश्क, वफा, आजमाइश और किस्मत के अजीब रंग नुमाया है। ये किस्सा है एक ऐसे शहजादे का जो मोहब्बत की शिद्दत में दुनिया से बेनियाज हो गया, और एक दरवेश का जिसने उसके दर्द को अपना दर्द समझकर उसकी मदद का अहद किया। तो आइए सुनते हैं दास्तान बाग बहार का अगला हिस्सा, सैर दूसरे दरवेश की।

जब पहले दरवेश की कहानी खत्म हुई तो दूसरे दरवेश की बारी आई। वो चारों के दरमियान बैठा और बोला, ऐ यारों, इस फकीर का माजरा सुनो। मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो। जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपटला दवा सुनो। दूसरा दरवेश अपनी दास्तान बयान करते हुए बताता है कि वो इस्फान के बादशाह का बेटा था। बेहतरीन तालीम और तरबियत की बदौलत कम उम्र ही में इल्म दानिश और आदाब शाही में महारत हासिल कर ली। एक रोज उसके एक दाना मुसाहिब ने उसे हातिम ताई की सखावत और फयाजी का मशहूर किस्सा सुनाया। मुसाहिब ने बताया कि हातिम ताई अपनी बेमिसाल सखावत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसकी शोहरत से मुतासिर होकर एक बादशाह नौफिल ने उसके खिलाफ लश्कर कशी कर दी।

खूनरेजी से बचने के लिए हातिम ने मुकाबला करने के बजाय एक पहाड़ी की गार में पनाह ले ली। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो शख्स हातिम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तभी गरीब बूढ़ा, उसकी बीवी और बच्चे लकड़ियां चुनने के लिए उसी गार के करीब आए। गुर्बत से तंग आकर बुढ़िया ने हसरत से कहा कि अगर हातिम मिल जाए तो उसे पकड़वा कर इनाम हासिल कर लें और फाकों से निजात पा जाएं। बूढ़े ने तकदीर पर राजी रहने की बात की, मगर उनकी ये गुफ्तगू गार में मौजूद हातिम ताई ने सुन ली। गार में छिपे हुए हातिम ने जब गरीब बूढ़े और उसकी बीवी की गुफ्तगू सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा कि अगर उसकी वजह से इन मोहताजों की परेशानी दूर हो सकती है तो खुद को छिपाए रखना मुनासिब नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। चुनाचे वो गार से बाहर आया और बोला, ऐ अजीज, मैं ही हातिम हूँ, मुझे नौफिल के पास ले चलो ताकि तुम्हें इनाम मिल जाए। बूढ़ा इस बात पर आमादा न हुआ और बोला, मैं महज माल की खातिर तुम्हें दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। जब हातिम के बहुत इसरार के बावजूद बूढ़ा न माना तो आखिरकार खुद हातिम उसे लेकर नौफिल के दरबार में पहुंच गया। नौफिल ने हकीकत दरियाफ्त की तो बूढ़े ने सारा माजरा सच सच बयान कर दिया। हातिम मेरी खातिर खुद आपके पास आया है। ये सुनकर नौफिल हातिम की बुलंद हिम्मती और फयाजी से बेहद मुतासिर हुआ और बोला, वाह, तेरी सखावत और जवान मर्दी की

क्या बात है, नौफिल ने हातिम का जब्त शुदा माल और इसबाब वापस कर दिया, उसका मर्तबा बहाल किया और बूढ़े को भी 500 शिफिया इनाम में अता की। मुसाहिब की जबानी हातिम ताई का किस्सा सुनकर दरवेश को मालूम हुआ कि सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि ईसार और इंसान दोस्ती का दूसरा नाम है। दरवेश के दिल में भी सखावत का जज्बा पैदा हुआ। उसने शहर के बाहर 40 दरवाजों वाली एक अजीम इमारत तामीर करवाई, जहां रोजाना मोहताजों और जरूरतमंदों में अशफियां तकसीम की जाती और हर साइल की हाजत पूरी की जाती। एक रोज एक फकीर आया, दरवेश ने उसे एक अशफी दी। वही फकीर बार बार मुख्तलिफ दरवाजों से आता रहा और हर मरतबा अशरफी लेता रहा, यहाँ तक कि 40 अशरफियाँ जमा कर ली। फिर वो दोबारा पहले दरवाजे पर पहुँचा। दरवेश ने ताज्जुब से पूछा, तुम कैसे फ़कीर हो कि क़िनात का दामन छोड़ बैठे हो? फ़कीरी हिर्स और लालच का नाम नहीं। फ़कीर को चाहिए कि सब्र, क़िनात और तवक्कुल इख्तियार करे। खैरात ज़रूरत पूरी करने के लिए होती है, जमा करने के लिए नहीं। इस पर फ़कीर ने दरवेश को नसीहत करते हुए कहा कि हकीकी सखावत सिर्फ माल लुटाने का नाम नहीं बल्कि इसार, इखलास और खुदा की रजा के लिए दूसरों की खिदमत का नाम है। सखावत अगर सीखनी है तो बसरा की शहजादी से सीखो। ये बातें कहकर वो चला गया, मगर उसकी गुफ्तगू दरवेश के दिल पर गहरा असर छोड़ गई और शहजादी से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। एक रोज उसने सल्तनत का इंतजाम वजीर के सुपुर्द कर दिया और फकीरों का सा भेस बदल कर तन्हा बसरा की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे हैरत हुई कि हर मंजिल पर आने वाले मुसाफिरों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाती थी। ये सब इंतजाम बसरा की शहजादी की जानिब से था। बसरा पहुंचकर उसकी मुलाकात एक निहायत खुश अखलाक और सखी नौजवान से हुई। उसने मोहब्बत से कहा, मैं मुसाफिरों और फकीरों की खिदमत को अपना फर्ज समझता हूँ, आप मेरे घर तशरीफ ले चलें और मुझे खिदमत का मौका दें। दरवेश उसके साथ चला गया। वहाँ उसने बेमिसाल मेहमान नवाजी देखी। तरह तरह के उम्दा खाने, मेवे और लजीज पकवान पेश किए गए। खाने के बाद आराम और आसाइश का ऐसा इंतजाम किया गया कि दरवेश हैरान रह गया। 3 दिन तक वो इसी इज्जत और एहतराम के साथ वहाँ मकीम रहा। 4th दिन उसने रुख्सत ली। कुछ देर बाद एक ख्वाजा सिरा आया और दरवेश को एक और शानदार महल में ले गया, जहाँ पहले से भी ज़्यादा इज्जत और एहतराम और आसाइशों का इंतज़ाम था। जहाँ दरवेश ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए शहजादी बसरा के नाम एक रुका लिखा, जिसमें अपने इश्तियाक और मोहब्बत का इजहार करते हुए अर्ज़ किया, मैं दौलत का मोहताज नहीं, अपने मुल्क का बादशाह हूँ। सिर्फ आपका हुस्न, नेकी और शोहरत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। रुका शहजादी तक पहुँचाया गया। कुछ देर बाद दरवेश को महल में बुलाया गया, जहाँ एक मोअज़्ज़ज़ खातून ने शहजादी का पैगाम सुनाया और कहा, बादशाहज़ादी ने कहलवाया, मुझे तुम्हारी दरख्वास्त कबूल है, लेकिन मेरी शादी की एक शर्त है। पहले शर्त को पूरा करना होगा, फिर निकाह मुमकिन होगा। दरवेश ने फौरन जवाब दिया, मैं जानो माल से कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, शर्त बयान कीजिए। अगले रोज़ एक शख्स बहरोज़ को बुलाया गया, जो शहजादी के तिजारती मामलात का निगरान था। उसने एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाया। बहरोज़ ने कहा, एक बार मैं शहर नीमरोज़ गया, वहाँ के तमाम लोग स्याह लिबास पहने हुए गमजदा नज़र आते थे। किसी से उसका सबब पूछता तो कोई जवाब न देता। फिर उसने बताया कि एक दिन शहर के तमाम लोग एक मैदान में जमा हुए। कुछ देर बाद एक नहायत हसीन नौजवान नमोदार हुआ, उसके साथ एक ग़ुलाम था। वो नौजवान एक अजीब चीज़ सब लोगों को दिखाता जाता और उसे देखकर हर शख्स बेख्तियार होने लगता। उसके बाद उसने अपने ग़ुलाम का सर कलम किया और वापस चला गया। कोई शख्स उस राज की हकीकत न बताता था। वहाँ से लौटकर मैंने यह वाक़या शहजादी को सुनाया। बस तभी से शहजादी बसरा इस अजीब वाक़े की हकीकत जानना चाहती हैं। उन्होंने अहद किया है कि जो शख्स इस मुअम्मा को हल कर देगा वही उनका और उनके मुल्क का हकदार होगा। ये सुनकर दरवेश ने पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया, अगर खुदा ने चाहा तो मैं इस राज की तह तक ज़रूर पहुँचूँगा और इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत मालूम करके वापस आऊँगा। दरवेश ने मलिका बसरा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई। उसे शाही महल में ले जाया गया, जहाँ हुस्न, शान व शौकत और नज़्म तरतीब का ऐसा आलम था कि वह

हैरान रह गया। मलिका के सामने हाजिर होकर उसने पहले उनकी फयाजी, अदल और मुसाफिर नवाजी की तारीफ की, फिर अर्ज किया, मैंने आपके मुल्क में जहाँ भी कदम रखा मुसाफिरों की खिदमत और मेहमान नवाजी का बेमिसाल इंतजाम देखा। मेरी हैरत ये है कि इतनी बेपनाह दौलत आखिर कहाँ से आती है। उस पर मलिका ने फरमाया, एक बड़े बादशाह की 7 बेटियाँ थीं। एक दिन बादशाह ने फख्र से कहा कि तुम्हारी इज्जत और इज्मत मेरी वजह से है। 6 बेटियों ने फौरन तायद की, लेकिन सबसे छोटी बेटी जो बाद में यही मलिका बनी खामोश रही। जब बादशाह ने वजह पूछी तो उसने अदब से अर्ज किया, जो कुछ इंसान के नसीब में लिखा सब अल्लाह ताला की अता है। ये बात बादशाह को नागवार गुजरी और गुस्से में आकर हुक्म दिया, इसके जेवरात उतार लो और इसे किसी वीरान जंगल में छोड़ाओ, फिर देखते हैं इसके नसीब क्या करते हैं। हुक्म की तामील हुई और शहजादी को एक सुनसान बियाबान में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन अचानक महल के आसाइशों से महरूम होकर भी शहजादी ने सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। मलिका ने कहा, खुदा जो चाहता है वही होता है और इसी में मशीयत और उसकी मशीयत में बंदे की भलाई पोशीदा होती है। कई दिन भूख और तकलीफ में गुजर गए, जिस्म कमजोर हो गया मगर उम्मीद बाकी रही। इसी हालत में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दरवेश वहां पहुंचे और अपनी इस्तेताद के मुताबिक मलिका की खिदमत शुरू कर दी। वो रोज शहर जाते, जो कुछ मिलता लाते और मलिका को खिलाते। कुछ दिन बाद इत्तेफाक से मलिका के पास एक कीमती मोती निकला। उन्होंने वो दरवेश को दिया, उसे बेचकर कोई इंतजाम किया जाए। मोती फरोख्त हुआ तो मलिका ने वहाँ एक इमारत तामीर करने का इरादा किया। जब जमीन खोदी गई तो एक खुफिया दरवाजा मिला जिसके अंदर एक खजाना मौजूद था जिसमें जवाहरात और रशफियाँ भरी हुई थी। मलिका ने उस खजाने से फायदा उठाकर एक अजीम शान शहर, महल, बाग, किला और मुसाफिर खाना तामीर करवाने का हुक्म दिया। रफ्ता रफ्ता इस आलीशान इमारत की शोहरत बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने हैरान होकर दरियाफ्त किया कि ये अजीम तामीर किसने करवाई है। जब हकीकत मालूम ना हुई तो उसने खुद वहां आने का इरादा किया। मलिका ने अदब से बादशाह को दावत दी और उनकी शानदार मेहमान नवाजी की। बादशाह ने पूछा, तुम किस मुल्क की शहजादी हो और यहाँ किस तरह पहुंची? तो मलिका ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी और बताया कि वो उन्हीं की शहजादी है जिसे कभी जंगल में छोड़ दिया गया था। ये सुनते ही बादशाह जज्बात से भर गए और उसे गले लगा लिया। बादशाह के इंतकाल के बाद सल्तनत भी उसी बेटी को मिली। यही इस दौलत की हकीकत है, सच्ची है, खुदा की अता को जवाल नहीं। इसके बाद दरवेश सफर पर रवाना हो गया। जब शहर निमरोज पहुंचा तो देखा कि लोग स्याह लिबास पहने गम में मुब्तला हैं। चांद रात के दिन सब लोग एक मैदान में जमा हुए। अचानक वहीं पर वो सवार नौजवान नमूदार हुआ। उसने हसबे मामूल एक अजीब चीज लोगों को दिखाई जिसे देखकर सब रोने लगे, फिर अपने गुलाम को कत्ल करके वापस जाने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद दरवेश उसका पीछा करने में कामयाब हो गया, लेकिन जवान ने उसका कत्ल करने के लिए तलवार बाहर निकाल ली। तभी दरवेश ने अदब से सलाम किया। उस पर जवान ने हैरत से कहा, ऐ फकीर, अपनी जान खतरे में क्यों डालता है, जा वापस चला जा। लेकिन दरवेश ने उसका पीछा जारी रखा। जवान जंगल के अंदर एक बुलंद चार दीवारी तक पहुंचा। उसने जोरदार नारा लगाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक गुलाम बाहर आया और दरवेश को भी अंदर ले गया। वहां उसने देखा कि वो जवान निहायत शान शौकत के साथ बैठा है। रात के वक्त जब दोनों तन्हा हुए तो जवान ने पूछा, ऐ अजीज, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसने तुझे अपनी जान खतरे में डालने पर। दरवेश ने पूरी दास्तान सुना दी और अर्ज किया, मुझे उम्मीद है कि आपकी इनायत से मेरी मुराद पूरी होगी। ये सुनकर जवान ने एक ठंडी आह भरी और बोला, इश्क के दर्द को वही जानता है जो खुद इस आग में जला हो। आफतों को इश्क की आशिक से पूछा चाहिए, क्या खबर फासिक को है सादिक से पूछा चाहिए। उसकी बातों से दरवेश को यकीन हो गया कि ये नौजवान भी इश्क के किसी आजमाइश में गिरफ्तार है। चुनाचे उसने दरख्वास्त की कि अपने सरगुजश्त बयान करे। तब नौजवान ने अपनी हैरत अंगेज कहानी सुनाना शुरू की और कहा, मैं अकली

0: भरी बैठी थी। वो मेरे पास आई, मोहब्बत भरी बातें की और मुझे अपना असीर कर लिया और फिर बोली, दिल तो चाहता है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर है। इन चंद लम्हों की मुलाकात ने मेरे दिल में उसके लिए दीवानगी पैदा कर दी। अभी मैं इस खुशी में डूबा ही हुआ था कि अचानक परीजादों ने आकर कोई खबर दी। परी का चेहरा बदल गया और वो रुखसत हो गई और मैं जुदाई के गम में दीवाना हो गया। इस इश्क के बदौलत क्या क्या खराबियाँ हैं, दिल में उदासियाँ हैं और इस तराबियाँ हैं। मैंने न खाया न पिया न आराम किया, तबीब हकीम दुआएं और तावीज सब बेअसर रहे। एक सौदागर के मशवरे से मुझे एक बड़ी जोगी के पास ले जाया गया। उसके इलाज से बदन तो संभल गया मगर दिल का दर्द बाकी रहा और मैं हर वक्त परी की याद में मुब्तला रहने लगा। न जानू किस परी रूह की नजर हुई, अभी तो था भला चंगा मेरा दिल। इस तरह एक दिन शहजादे को एक किताब मिली जिसमें अजीब उलूम और जिनो परी की तस्खीर के राज थे। इस इल्म के जरिए उसने दोबारा अपनी महबूब परी को बुलाया, वो वापस भी आई। शहजादा उसकी मोहब्बत में इस कदर मगन हो गया कि उसे दुनिया की किसी चीज की फिक्र न रही। परी उसकी वफादारी और वादा निभाने पर हैरान थी, मगर वो बार बार उसे एक बात की नसीहत करती थी, अपनी इस किताब की हिफाजत करना, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत है जिस पर जिन्नात की नजर है। अगर तुम किसी वक्त गफलत करोगे तो वो इसे चुरा ले जाएंगे। शहजादा भी उस किताब को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था और हमेशा अपने पास रखता था, मगर एक रात उससे गफलत हो गई। परी के करीब बैठा हुआ बातों में ऐसा खो गया कि उसे किताब का ख्याल तक न रहा। उसी लम्हे परी ने उसे मुतनब्बे किया, ये किताब मुझे दे दो, इसमें इसमें आजम है, इसकी बेहरमती ना करो। शहजादा इश्क की सरमस्ती में ये न समझ सका कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। उसने बेखबरी में वो किताब परी के हवाले कर दी। परी ने जब ये देखा तो अफसोस से कहा, देखो आखिर तुमसे लग्जिश हो ही गई, तुम मेरी नसीहत भूल गए। ये कहकर वो बेहोश हो गई। शहजादे ने देखा कि एक देव उसके सिरहाने खड़ा है और किताब ले जाने की कोशिश कर रहा है। शहजादा उसे पकड़ने दौड़ा, मगर देव ने वो किताब दूसरे देव के हवाले कर दी और वो उसे लेकर भाग गया। शहजादे ने फौरन वो मंत्र पढ़े जिनसे जिन्नात काबू में आते थे। एक देव तो उसके असर से बैल बन गया, मगर अफसोस कि परी को होश ना आया। उसी लम्हे शहजादे को एहसास हुआ कि एक छोटी सी गफलत ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसके बाद उसका दिल दुनिया से उचट गया, वो तन्हाई में रहने लगा और इश्क जुदाई के गम में मुब्तला हो गया। यही गम उसे हर माह उस मैदान तक ले जाता था जहां वो अपने दर्द को दुनिया के सामने जाहिर करता था। इस हादसे के बाद शहजादा दुनिया से बेजार हो गया, वो बाग में तन्हा रहने लगा और हर महीने एक बैल पर सवार होकर शहर जाता, एक मर्तबान तोड़ता और गुलाम को मार देता ताकि लोग उसकी हालत देखें और शायद कोई दुआ करें। इस तरह शहजादे ने दरवेश को अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दरवेश ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसके इश्क और मुसीबत को समझता है और उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। शहजादे से वादा करके दरवेश 5 साल तक जंगलों और पहाड़ों में परी का सुराख ढूंढता रहा। आखिर मायूस होकर एक पहाड़ से गिरने का इरादा किया था कि तभी एक अजीब सवार नमूदार हुआ और उसे रोक कर कहा, अपनी जान मत खो, थोड़े दिनों के बाद तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। दरवेश को उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब इस सफर का अंजाम खुशी पर होगा। और इसी के साथ आज की दास्तान का ये हिस्सा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अपनी मेज़बान शाज़िया ख़ान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी बागो बहार की अगली दास्तान और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने तासुरात हमारे व्हाट्सएप नंबर 7991778157 पर इरसाल करना ना भूलिए। आदा।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। ये आकाशवाणी

0: का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज के फनकार हैं सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर।

0: कीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक एमबीए एमसीए बीबीए बीसीए बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। केआईपीएम गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
4: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
3: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
4: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: अंचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास। और
0: अंचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: सुगम संगीत का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। इसमें आज के फनकार थे सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 10 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षत विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का आपका अपना कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

जॉली एलएलबी इस फिल्म की कव्वाली एक आपने अभी सुनी। आवाज़ें सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और कादिर मुस्तफ़ा की थीं। आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम गाते गुनगुनाते।

बजरंगी भाईजान से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें मीका सिंह और इनके साथियों की थी। गीत लिखा था शब्बीर अहमद ने और इसे संगीत दिया था प्रीतम ने।

बादशाह फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें नुसरत फ़तेह अली ख़ान और राहत फ़तेह अली ख़ान की थी। गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीत दिया था नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने। फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: सैंडल हर पल चंदन का एहसास।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

बरसात की रात इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मन्ना डे, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रोशन ने।

0: देख कबीरा रोया, इस फिल्म में अभी आपने सुना मन्ना डे को। गीत राजेंद्र कृष्ण का था और संगीत मदन मोहन का। फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर।

पूजा के फूल। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। गीत राजेंद्र कृष्ण का था और संगीत दिया था मदन मोहन ने।

चिराग फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत दिया था मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी आपकी परछाइयाँ। गीत लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 900 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब से कुछ पलों में।
1: कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आइए सुनते हैं रोजी दली के गाए कुछ लोकगीत।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे रोजित अली। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 900 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब से कुछ पलों में।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का आरंभ हम कर रहे हैं मूवी चक दे इंडिया के इस गीत से।

चक दे इंडिया, इस मूवी का ये विशेष गीत सुन रहे थे आप।

0: अजब गजब लव, इस मूवी का ये गीत सुन रहे थे आप। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। अगला गीत अब से थोड़ी देर में।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

श्रोताओ, लैला मजनू फिल्म का ये गीत हम आपको फिर कभी सुनवाएंगे, क्योंकि हमारा आज की गीतांजलि कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो चुका है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित, नई दिल्ली एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, सुनिए उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
3: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की।
2: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
2: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहाँ चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
3: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
3: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
2: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी।
2: आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल। वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
3: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
3: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
3: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
3: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
2: मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
3: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
3: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
3: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
1: अब
3: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
3: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
3: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
3: ध्यान से
1: बेटा। आई
0: क्या हुआ चुब्बा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुभ गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। ले लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया है? अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या?
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
2: तू समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
2: बता?
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कट

0: फल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल
0: सच्ची।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने अब से कुछ पलों में।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: गीत सुहाने। इस कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं शर्मिली फिल्म के इस गीत से।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: अनामिका फिल्म के इस गीत के लिए आवाज़ थी किशोर कुमार की। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन ने।
1: सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

नमक हराम फिल्म के संगीत के लिए यह आवाज थी किशोर कुमार की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारे ये कार्यक्रम गीत सुहाने अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर। कार्यक्रम अब से कुछ पलों में है।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर को।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राज ठाकुर और सदा ठाकुर, सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर को। आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 1:10 हुए हैं। इलाकाई खबरें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर असेंबली हलकों में 569 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने 2500 बेघर खानदानों में शहरियत और लीज तकसीम की। जलसायाम से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि हुकूमत का अज़्म गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है। मरकजी वजीर ममलकत और पीलीभीत के MP जितिन प्रसाद भी इस तकरीब में मौजूद थे।
2: हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे।
1: पीलीभीत के बाद वज़ीर-आला मुरादाबाद जाएंगे, जहां वो मुरादाबाद डिवीज़न में महकमा तामीरात आम्मा के पुराने कामों का जायज़ा लेने और नए कामों के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग की सदारत की और कई प्रोजेक्टों, बशमूल एक्सप्रेसवे, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर

0: स्ट्रक्चर, देही रोजी रोटी, तवानाई और ईवी चार्जिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर और मेयारी तरीके से मुकम्मल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, तिब्बी इदारों, ज़िलाई सतह के मर्दाना व ख़वातीन अस्पतालों और होटलों के फायर NOC स्टेटस की फौरी तस्दीक की हिदायत दी। वज़ीर आला ने एक्सप्रेसवे समेत दीगर मंसूबों के लिए ज़मीन के हुसूल के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के साथ सनअती इलाकों की तरक्की के लिए मुनासिब ज़मीन की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर खसूसी ज़ोर दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस ज़िले में 548 करोड़ रुपए के 143 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुस्तहकीन में घर की चाबियां, स्मार्टफोन और चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हाथरस में जल्द ही एक प्रोसेसिंग सेंटर मुकम्मल हो जाएगा, जिससे वहाँ के आलू काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा निदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद वज़ीर आला ने आगरा में अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के साथ तरक्याती कामों और अमन व अमान की पेशरफ्त के सिलसिले में जायजा मीटिंग की। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को तमाम ज़ेरुल्तवा प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया केस के तमाम 8 मुलजमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस तमाम 8ों की रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मुबैना गबन और माली बेजाबदगियों से मुतालिक दायर दरख्वास्त की आज समाअत हुई। अर्जी में CBI की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया था। कल से रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज हुआ। पहले दिन बूथ डे पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। आज से 3 जुलाई तक महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। मुहिम के पहले रोज़ मुख्तलिफ अज़ला में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। रियासत में देही तरक्की महकमे ने महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह पर VBG रामजी यानी तरक्की याफ्ता भारत रोज़गार और रोज़ी रोटी गारंटी मिशन देही स्कीम के मुअस्सर निफाज की तैयारी मुकम्मल कर ली है। यह स्कीम 1 जुलाई 2026 से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगी। इस सिलसिले में 2 जुलाई को रियासतगीर अवामी कॉन्फ्रेंस लॉन्च इवेंट प्रोग्राम होगा, जिसके तहत मुजव्वजा कामों और तरक्की याफ्ता देही पंचायत स्कीम की नुमाइश की जाएगी। रियासत में कुल 10,000 से काम 2 जुलाई को शुरू किए जाएंगे। दारुल हुकूमत लखनऊ और आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम में तब्दीली देखी गई और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरक़ी डिवीज़न में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम नारी जगत।

कटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस के रूप में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2016 में की थी और इसे मनाने का उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिक्स के महत्व और उनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। बहनों, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर दुनिया की 40% आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में आता है। ये धरती का वो भाग होता है जहाँ पर प्रकृति अपने सबसे सुंदर, रंगीन और समृद्ध रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर घने घने वन होते हैं, अनोखे जीव जंतु होते हैं और विविध संस्कृतियाँ एक साथ फलती फूलती हैं। बहनों, यहाँ पर कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, व्यापार जैसे अनेक रोजगार इसी क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं और करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जीविका भी इन्हीं पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवन की विविधता अपने सुंदर रूप में दिखाई देती है। लेकिन अगर आजकल की बात करें तो आजकल देखिए ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बहुत तरह की चुनौतियाँ आ गई हैं। ये क्षेत्र बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वो चुनौतियाँ कौन सी हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा एक गीत।

बनो मुकेश की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत था। फिल्म थी बूंद जो बन गई मोती। बनो, उस चित्रकार ने ये धरती बहुत खूबसूरत बनाई है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनसे बातें करते बादल हैं और कल कल बहती नदियां हैं। पर हम सब आधुनिकता की दौड़ में इस प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, यहाँ पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं और हरित क्षेत्र कम हो रहे हैं। इमारतें, सड़कें बढ़ने के कारण गर्मी बहुत अधिक महसूस होती है। इसे हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और आपने भी महसूस किया होगा कि बारिश का पैटर्न भी बहनों बहुत बदलता जा रहा है। कहीं बहुत अधिक बारिश होती है तो कहीं पर सूखे की स्थिति बन जाती है, और इन सब का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर, बच्चों के भविष्य पर और परिवार की जीवन शैली पर पड़ रहा है। मैंने ऐसे में हम सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम घर से ही छोटे छोटे प्रयास करके बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि पानी की बचत करना हमें एकदम आना चाहिए, और पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और हमें प्लास्टिक का यूज़ एकदम बंद कर देना चाहिए, और हम किचन वेस्ट से खाद बनाना सीखें, बिजली की बचत करना सीखें। और अक्सर कर आपने महसूस किया होगा या देखा होगा कि लोग अपना अपना वाहन लेकर के चलते हैं, इससे भी डीजल की खपत और पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, गर्मी बढ़ती है। इसलिए हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग भी बढ़ाएँ और बच्चों को भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाएँ। बहनों, ये छोटे छोटे कदम मिलाकर हम पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी मिसाल बन सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स पर हम ये सब संकल्प लें कि अपने शहर को हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में हम अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की भी अमानत है, और इसे स्वस्थ और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

मनु, आपको नहीं लगता कि अब गर्मी पहले जैसी नहीं रही है? पहले शाम होते ही देखिए मौसम सुहाना हो जाता था और हम लोग अपने गार्डन में या ऊपर छत पर चाय का कप लेकर के बैठ जाते थे। उसके साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी होती थी। पर अब रात में भी गर्म हवा का एहसास होता है। इस जैसे जैसे हमारे शहरों का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे गर्मी और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ पहले पेड़ों की हरियाली और खुले मैदान वातावरण को ठंडा रखते थे, वहीं उनकी जगह ऊंची-ऊंची इमारत और सड़कों ने ले ली है। और इसका असर है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ हवा भी अशुद्ध हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम महिलाएं अपने साथ साथ अपने परिवार का ध्यान कैसे रखें। सबसे पहले तो गर्मी से बचाव के लिए शरीर में इस बात का ध्यान रखें कि पानी की कमी ना होने दें। घर से निकलते समय पानी की बोतल अपने साथ रखें। और बहनों, बाजार के ठंडे रंगीन पेय पदार्थ पीने के बजाय अगर हम घर के देसी ड्रिंक लें तो वो न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि ठंडक भी देते हैं। इसके लिए आप कच्चे आम का पन्ना बना सकती हैं जो हमें लू से बचाता है और इसमें काला नमक, जीरा, पुदीना स्वाद भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप सत्तू का शरबत भी ले सकती हैं जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। काला नमक, भुना जीरा, नींबू और महीन कटी हरी मिर्च, प्याज, धनिया की पत्ती स्वाद तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ ही साथ पेट को ठंडा भी रखती है और दिन भर की ऊर्जा भी आपको इसे पीने से मिलती है। और बहनों, बेल का शरबत तो मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। नींबू पानी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। बहनों, ये देसी ड्रिंक सिर्फ शरीर को ठंडा नहीं रखते हैं बल्कि आपको एनर्जी भी देते हैं। और गर्मी से बचने के लिए इसके साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, वो है कि जब बहुत तेज़ धूप हो, जिस वक्त जैसे कि 12 से 4 का जो टाइम होता है, इस समय आप कोशिश कीजिए कि घर के बाहर

ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तो सूती कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े पहन करके घर से निकलें, और इसके अलावा सिर को दुपट्टे और टोपी से ढक करके रखें, और छाता तो अपने साथ रखना ही रखना है। ये तो बात हुई गर्मी से बचने की, पर इसके साथ साथ बहनों प्रदूषण से बचने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि जहाँ पर बहुत अधिक ट्रैफिक वाला एरिया है वहाँ पर अनावश्यक बहुत ज़्यादा न रुकें, मुंह पर मास्क लगाए रखें, और घर लौटने के बाद चेहरा और हाथ और आँखें आपको ठंडे साफ पानी से ज़रूर धो लेनी चाहिए। और इन सब बातों के अलावा बहनों घर के अंदर का वातावरण भी बेहतर बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सुबह और शाम ताज़ी हवा घर के अंदर आए, आप दोनों टाइम आप खिड़कियों को खोल कर रखिए, और घर में अगर थोड़ी भी जगह है तो गमलों में तुलसी, स्नेक प्लांट, एलोवेरा और मनी प्लांट जैसे पौधे ज़रूर लगाएं। ये आपके घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही आपके वातावरण को भी बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। और बहनों बाहर जितनी सावधानी अपनानी है उतनी ही सावधानी हमें अपने खान पान पर भी ध्यान रखनी है। कहते हैं ना कि मौसम तो आना जाना है, सुहाना हमें बनाना है इसे। और अगर हम अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में मौसम के हिसाब से परिवर्तन कर लेंगे तो हमें मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं कि मौसम के अनुसार भोजन ही सबसे अच्छी दवा है। गर्मी में अगर हम अपनी रसोई में मौजूद देसी और पौष्टिक चीज़ों को अपनाएंगे तो हमें प्राकृतिक रूप से ठंडक मिलेगी और इससे हम बीमारी से भी बचे रहेंगे। इसलिए हमें अपने मौसम के हिसाब से खान पान करना चाहिए। गर्मी के दिनों में हल्का, ताज़ा और आसानी से पचने वाला खाना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा दाल, हरी सब्जी, दही, छाछ, सलाद और मौसमी फल जैसे कि तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम, ये चीज़ें आपको अपने खाने में शामिल करनी है। बहनों ये सब पानी वाले फल होते हैं और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं, और साथ ही साथ आपको दिन भर की ताजगी भी देते हैं। सुबह के नाश्ते में आप पोहा, इडली, दलिया, अंकुरित अनाज, दही के साथ चूरा जैसे हल्के नाश्ते लें, और दोपहर के खाने में आप दाल, चावल, रोटी और मौसम की सब्जी लीजिए। दही और छाछ को तो आपको अपने खाने में शामिल करना ही करना है, ये संतुलित भोजन आपको ऊर्जा देता है। और रात का खाना हमेशा आपको हल्का खाना है जिससे कि नींद अच्छी आए और शरीर को आराम मिले। बहनों ये देसी ड्रिंक, सिर्फ देसी खाने, देसी नुस्खे आज भी उतने ही कारगर हैं जितना पहले थे, बस हम आधुनिकता की चकाचौंध में इनसे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए बहनों अगर स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा। देसी खान पान, संतुलित जीवन शैली और प्रकृति के करीब रहना ही अच्छे स्वास्थ्य की असली कुंजी है।

बेनु, इस खूबसूरत गीत के साथ हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं बरसात की, क्योंकि देखिए कल रात की भयंकर बारिश, भाई मई और जून की झुलसती गर्मी के बाद पानी की ये फुहार बहुत राहत लेकर के आती है, लेकिन इसी के साथ उमस भी बढ़ जाती है और बढ़ जाता है जगह जगह पानी का जाम। अगर निकासी का उचित प्रबंध ना हो तो सड़कें, नाली और मैदानों में पानी बहुत जगह भर जाते हैं, और अगर ये पानी काफ़ी दिनों तक रहें तो इनमें मक्खी, मच्छर और भी बरसाती कीड़े पनपने लगते हैं। इसलिए हमें, अभी बरसात की शुरुआत हो रही है, तो हमें अभी से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी पानी न जमा होने पाए। इसके लिए हमें गंदगी या कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाना है, नालियों में तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, इससे पानी रुकता है और बरसात में सड़कों नालियों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, और अगर कहीं पर भी पानी जाम होता है तो बहनों उसके निकासी का प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसमें कीटनाशक दवा भी आपको डाल देनी है जिससे कि किसी भी तरह के बरसाती कीड़े ना पनपें। और अगर घर में आपके कहीं ऐसी जगह है, जैसे छत पर, अक्सर कर देखिए हम कूड़ा करकट उस छत पर फेंक देते हैं, और कूलर में भी पानी कई दिनों तक जमा होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर भी हमें पानी जमा नहीं होने देना है। और इसके साथ ही साथ बाज़ार के कटे हुए फल या खुली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि मक्खियों द्वारा ये दूषित हो जाती हैं और जिससे कि बीमारी फैलने लगती है।

और अगर किसी को भी इस मौसम में उल्टी या दस्त होता है तो बिना कोई भी देरी किए जीवन रक्षक घोल यानी कि नमक चीनी और का घोल तैयार कर लेना है और उसे समय समय पर देना है। और अगर प्रॉब्लम थोड़ी भी बढ़ती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। बनो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर बरसाती कीड़े काटते हैं या कहीं पर दाने या सूजन आ जाती है तो तुरंत आपको उसे किसी कीटनाशक दवा से आपको पोंछ देना है। और साथ ही साथ नंगे पैर कहीं पर भी आपको नहीं आना जाना है। खुली घास में, बाग बगीचे में, इन जगहों पे कीड़े होते हैं जो आपके पैरों में काट सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगी तो मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि मौसम आना जाना है और सुहाना हमें बनाना है अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके। और अब वक्त हो चला है एक और खूबसूरत गीत का, तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: पहलू इस खूबसूरत गीत के साथ नारी जगत कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का और पर्यावरण का ध्यान रखिए। नमस्कार।
1: महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ

से कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से

0: लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खेती किसानी कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं बातचीत जिसका विषय है बेर की उन्नतशील प्रजातियों की बागवानी। इस विषय पर डॉक्टर बीरेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार।
1: किसान भाई, बाग बगीचा लगावल खेती बाड़ी के साथ बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर अपने क्षेत्र में आम, कटहल, लीची, अमरूद, बेल, आंवला, यह तरह के लोग बागवानी व्यवसायिक स्तर पर करेला। लेकिन अब वो देखल जा तो तमाम ऐसा धार्मिक कार्य हुआ, अनुष्ठान हुआ, जौना में जरूरत पड़े ले चढ़ावे खातिर, खाए खातिर पत्ता का जरूरत पड़े ले औषधि महत्व है, वो है बेर, जौना के हमन का बैर के नाम से जानल जाला। एकर पौराणिक भी महत्व काफी है। बेर जंगली अवस्था में झरबेरी के नाम से भी जानल जाला। एकर बहुत महत्व है और जौन औद्योगिक महत्व है, तमाम तरह का कंपनी एकर उपयोग करेली। लेकिन आज हमन का बात कही जाये कि जौन बेर का उन्नतशील प्रजाति है, उनका नाव का है, उनका विशेषता का है, आप बदलत परिवेश में एमे कौना तरह का परिवर्तन कैल गेल बा कि अब ई सामान्य फल जैसे अमरूद बा, लीची बा, आंवला बा, आम बा, और तो और बेर का दाम कबो कबो तो सेब के बराबर भी देखे के मिल जाला, आ बड़ा कम मात्रा में बड़ा कम समय खातिर आवेला। आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं, यही से संबंधित जानकारी देवे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। आप हैं प्रभारी अधिकारी राजकीय औद्यानिक प्रयोग एवं

0: शिक्षण केंद्र बरुआ सागर जनपद झांसी में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
1: धन्यवाद।
0: अपने यह पूर्वांचल में बेर की खेती का भविष्य का बा, जरूरत का बा, आ एकर का महत्व बा औद्यानिक फसलन में?
1: आपको पता ही है, धीरे धीरे हमारा समाज जैविक खेती तरफ जा रहा है, और जो आपने नाम लिया अमरूद वगैरह का, आम वगैरह का, इनके फलों को बचाने के लिए बार बार दवाई डालनी पड़ती है। खासकर अगर अमरूद की बात करें तो बरसात के मौसम अभी आने वाला है, इसमें फ्रूट फ्लाई बहुत बड़ा अटैक करता है। तो इस तरह से ये जो जहाँ तक बेर की बात है तो इसमें कीड़े और बीमारियां कम लगते हैं, और ये जो है अगर हमारे थोड़ा सा कम सेवा भी किया गया तो भी इसको जो है इसी खेती करना जो है बड़ा आसान रहता है। यानी अगर मिट्टी कमजोर है, बलुई दोमट है या जो है पठार टाइप का है, कमजोर मिट्टी में भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसका स्कोप जो है बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने कहा कि इसका बहुत धार्मिक महत्व है, खासतौर से शिवरात्रि के समय शंकर जी को चढ़ाने के लिए या जो है व्रत वगैरह में उपयोग के लिए, इस तरह से कमर्शियल भी इसका उपयोग है। हमने आपको ऐसे इसके पहले बात किया था कि कोल्ड ड्रिंक बनाने में जो कलरिंग होती है इसमें भी बेर का उपयोग करते हैं, सूखे सूखे फलों का। तो इसका इसको बहुत अच्छा है, और इसका सूखे फलों का पाउडर बना करके अगर मान लीजिए इस कर्वी की समस्या है तो उसमें भी इसका पाउडर का घोल अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे राहत मिलती है, और इसमें कैलोरी कम होता है। तो जो मोटे लोग हैं, हमारे देश में अभी आया था पेपर में, नीति आयोग ने चिंता व्यक्त किया कि भारत में मोटापा बढ़ रहा है, तो मोटापा कम करने में भी एक सहायक है ये, जिसके फल खाने से मोटापा कम हो सकता है, और एंटी कैंसरस है, और जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो इस तरह से इसका जो है मधुमेह में भी फायदेमंद है ये। तो इसका औषधीय और धार्मिक दोनों तरह का महत्व है। तो इसका जो है बहुत अच्छा जो है संभावना है। और हमारे यहाँ झांसी में तो सर इसका जो है चॉकलेट बन रहा है, कैंडी बन रहा है, कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। एक जो है तोमर मैडम है, वो बना रही है यहाँ पे, उनका इसमें पूरा नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, शिवानी, शिवानी मैडम। तो इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने जो है MBA वगैरह कर रखा है, ये जो है स्वतः अपना उद्योग लगा करके इस पे बेर पे काम कर रही है यहाँ पे झांसी में।
0: हमारे पूर्वांचल में जौन उसरीली भूमबा, जौन ऊंच नीच भूमबा, जौन नदी के किनारे कबा जहाँ पानी ना पहुँचेला, लेकिन इतना उबड़ खाबड़ बा जहाँ की सामान्य खेती ना कईल जा सकेला, कोनो फसल ना लिहल जा सकेला, कुछ भट्ठा का जमीन है, कुछ ऊसर है, कुछ रेह है, तो ये हमें एकर खेती बढ़िया से कई जा सकेला।
1: जी सर, बहुत अच्छा है। अच्छा? सर इसमें जो फूल निकलता है सर, वो निकलता है सितंबर के महीने में, तो उसमें जो है मौसम अच्छा रहता है, उसमें नमी पर्याप्त रहती है सर। इसका फल पकते पकते धीरे धीरे मौसम जो है शुष्क होता है, लेकिन फिर भी मिट्टी में नमी पर्याप्त रहती है सर। तो इसकी खेती में जो है बहुत कम से कम देखभाल में इसकी खेती अच्छी हो जाती है।
0: अच्छा, एक बात बताएं कि एकर का फर्दा बाग अलग से लगावे के चाहिए या कहीं किनारे जमीन पड़ल बा तो ओके बाग के किनारे लगावे के चाहिए, या कोना हिसाब से आप लोग एकर खेती कैला का सलाह देला?
1: सर हम तो इसको राय देंगे अलग से अच्छी खेती की जाए, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह होते हैं।
0: अच्छा,
1: इसकी खेती अलग से ठीक रहेगा।
0: एकरे खातिर प्रजात कौन कौन है
1: सर? प्रजातियां जो हमें जब बस्ती में थे तो हमने देखा था कि सबसे पहले जो प्रजात पकती है वहाँ बस्ती में, उसका नाम है दिल्ली गोला या गोला।
0: अच्छा,
1: तो ये सबसे पहले पक जाती है। लेकिन सर जो ये जो थाईलैंड वाली बेर आई है ये उससे पहले पक जाती है, दिसंबर में पक जाती है। तो जो है दिसंबर से लेकर के जो है शिवरात्रि तक या उसके बाद तक इसके फल मिलते रहते हैं, तो संभावनाएं अपार हैं। हम जो है दिल्ली गुला से लेकर के थाईलैंड वाली बेर भी पैदा कर सकते हैं, और तमाम प्रजातियां हैं, जैसे बनारसी कड़ाका है, सेव है, छुहारा है, थार सेविका है, थार भृगराज है, तो थोनलेस जोधपुर थोनलेस है, गोमा कीर्ति है, सर बहुत सारी प्रजातियां हैं सर। लेकिन अर्ली के लिए जो है आपका थाईलैंड वाली बेर, और उसके बाद जो है दिल्ली गोला या गोला, और लास्ट में जो है सबसे देर पकती उमरान हो गया, बनारसी कड़ाका हो गया।
0: अच्छा, आप लोग औद्यानिक शोध प्रशिक्षण केंद्र में काम करे ली तो ये पर काम कौना तरीका से होत बा कि फलत बढ़िया मिले, और एकर पौधा का रोपण कितना कितना दूरी पर करे के चाहिए?
1: सर जहाँ तक बेर की बात है तो जो है एक सामान्य सलाह यही है कि इसको जो है 6 मीटर पेड़ से पेड़, लाइन से लाइन, या 8 मीटर पेड़ से पेड़, लाइन से लाइन लगाया जाए। हमारे किसान भाई जो है इसमें एक जो है कमी कर देते हैं कि फल को तोड़ने के बाद जो है उसका जो है प्रून नहीं करते हैं,
0: कटाई छटाई टहनी का।
1: हाँ बिल्कुल। तो सर फल तोड़ने के बाद अप्रैल के महीने में या मई के महीने में अगर जो 50% जितनी डाली लंबी हुई है, निकली है नई नई डालियां, 50% जरूर काट देना चाहिए। और जहां तक थाईलैंड बेर की बात है सर, तो ये तो जो है 2-3 इंच छोड़

0: करके पूरा पूरा जो है डाली काट देते हैं तो नई नई डाली निकलती है। और इसमें सर बेर में जो है इसका फिजियोलॉजी है कि इसमें नए नए जो डाली निकलती है, सूट निकलता है, उसी में फ्लावरिंग फ्लोटिंग होती है।
1: अच्छा, तो काला का मतलब कि चाहे 8 × 8 मीटर पर, चाहे 6 × 6 मीटर पर जौन प्रजाति है ओकर रोपण करी, लेकिन एकरे पौधा के कटाई छटाई करके आकार नियंत्रित करी ताकि तोड़ समय ओकरे निराई गुड़ाई करे समय सुविधा होखे।
0: सर थाईलैंड जो बेर है इसमें, इसको तो लगाते हैं लाइन से लाइन 2 मीटर, पेड़ से पेड़ 2 मीटर, 1 मीटर
1: अच्छा
0: जी, लाइन से लाइन 2 मीटर और पेड़ से पेड़ 1 मीटर लगाते हैं इसको, थाईलैंड बेर को।
1: हाँ, आप लोगन के क्षेत्र में संस्तुत जोन प्रजात जौना के लगौला का पौधा उपलब्ध हो पावेला, प्रदर्शन आप लोग करेली, कैसे उपलब्धता बा एकर?
0: सर यहाँ पे जो हमारे अधीक्षक थे पिछले पिछले साल में, अभी तो उनका जो है डीडी अभी हैं वो, श्री विनय कुमार यादव जी, ये आए थे फिरोजाबाद से। तो इन्होंने जो है जो पिछले वित्तीय वर्ष बीता है, जुलाई अगस्त बीता है, तो फिरोजाबाद से मंगवाए थे पौधे ये, और
1: अच्छा
0: किसानों को जो है 60 रुपये में दे रहे थे एक पेड़। और जो है सर उम्मीद है कि हम लोग आगे चल के इसके पौधे बना पाएंगे, लेकिन फिलहाल सर प्राइवेट में जो है इसके पौधे मिल रहे हैं। सर हमने सहारनपुर जहाँ थे तो वहाँ पता किए थे, तो वहाँ तो सर जो है थाईलैंड बेर का एक पौधे का दाम बता रहे थे 350 रुपया
1: काला
0: प्राइवेट
1: का
0: में।
1: मतलब ये बा कि अपने जिला में जौन जिला उद्यान अधिकारी हम
0: जी
1: बेर की खेती करे खातिर पर्याप्त मात्रा में उनके पास सूचना बा, पौधा उपलब्ध करावला के बारे में भी जानकारी दे सकेला, आ केंग केंग एकर खेती करे के चाही कि पुरहर जानकारी मिल सकेले। लेकिन यह
0: जी
1: साल
0: जी
1: बेर के खेती करे खातिर भले आदमी 10 पेड़ लगावे, 5 पेड़ लगावे, लेकिन मन जरूर बनावे, कहां से कि बेर का खेती बा या बागवानी बा एकदम से लगा दिया के बाद लगभग निःशुल्क बा, कोनो में लागत नहीं लगे वाला बा।
0: जी
1: डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, आप इतना बढ़िया जानकारी देनी कि बेर के खेती कैला से लाभ का बा, एकर प्रजात कौन कौन बढ़िया है, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: बेर की उन्नतशील प्रजातियों की बागवानी, इस विषय पर डॉक्टर बीरेन्द्र प्रताप सिंह से बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। खेती किसानी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियो वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 2 बजने को हैं। समाचार क्रमशः अंग्रेजी तथा हिंदी में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: Good afternoon. This is Akashvani, and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. 3-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the Northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. President Murmu had earlier conferred gallantry awards at the Defence Investiture Ceremony Phase 1 at

0: also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has said she will return to Bangladesh before the end of this year, despite facing legal cases, a death sentence, and a ban on the political activities of the Awami League, raising fresh questions over the exclusion of one of the country's largest political parties from the political process. In an interview with a TV channel, Hasina described the cases against her as politically motivated and accused the current authorities of using the judiciary to eliminate the Awami League from Bangladesh's political landscape. Hasina's remarks came as the Awami League observed its 77th founding anniversary amid a nationwide ban on its activities and extensive security measures. China has imposed new export controls on 40 Japanese entities, accusing them of contributing to Japan's remilitarization as tensions between the two countries continue to rise. China's Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की

0: 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और

0: विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स है और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड है, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा से जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कविता अलङ्करण समारोहको पहिलो चरणमा वीरता पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अफ्रिकी देश सेसेल्सको आफ्नो यात्राको तेस्रो दिन आज भिक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकगण मन्दिरको भ्रमण गर्नुभयो। उहाँले त्यहाँ बस्ने भारतीय प्रवासीहरूसित भेट गर्नुभयो। श्री मोदीले पीस पार्कमा महात्मा गान्धीको प्रतिमामा पुष्पाञ्जली पनि अर्पित गर्नुभयो। श्री मोदीले आफ्नो तीन दिवसीय सेसेल्स यात्रा सफलतापूर्वक पूरा भएपछि स्वदेशको लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेसेल्स की तीन दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेसेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज विश्वका विविध संस्कृतिहरूको सम्मानमाथि बल दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सोसियल मिडियामा एक संस्कृत सुभाषित साझा गर्नुहुँदै विश्व अनि विविध संस्कृतिहरूको सम्मान गरिए मानिसहरूबीच विश्वास अनि सहयोगको भावना बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसद्वारा आपसी समझ अनि भाइचारालाई पनि बढावा प्राप्त हुनेछ। सर्वोच्च न्यायालयले आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाई प्राप्त दानमा कथित वित्तीय अनियमितताहरूको अदालतको निगरानीमा जाँच अनि फोरेन्सिक अडिटको माग रहेको जनहित याचिकामाथि तत्काल सुनवाई गर्नबाट अस्वीकार गरेको छ। न्यायमूर्ति एमएम सुन्दरेश अनि सिल नागुको खण्डपीठले याचिकाको तत्कालिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै ग्रीष्मकालीन अवकाशपछि अदालत खुलेपछि याचिकालाई सूचीबद्ध गरिने निर्देश दिएको छ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले आज नयाँ दिल्लीको संसद भवनमा राज्यसभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति अनि राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णनले श्री खड्गेलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो। श्री खड्गे कर्नाटकबाट राज्यसभाको लागि निर्वाचित हुनुभएको हो। यस अवसरमा केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजु, स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गान्धी अनि प्रियंका गान्धी उपस्थित थिए। नीट यूजी परीक्षा लिक मामलामा दिल्लीको एक अदालतले आज कांग्रेस केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआईद्वारा जाँच गरिँदै गरेको 10 आरोपीको न्यायिक हिरासत 11 जुलाईसम्म बढाइदिएको छ। आरोपीहरूलाई उनीहरूको पछिल्लो न्यायिक हिरासतको अवधि समाप्त भएपछि भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट रौंज एभिन्यू कोर्टमा पेश गरिएको थियो। यसअघि 15 जुनमा रौंज एभिन्यू कोर्टले 10 आरोपीहरूको न्यायिक हिरासत आजसम्म बढाइदिएको थियो। सीबीआईले हालसम्म यस मामलामा 13 आरोपीलाई गिरफ्तार गरेको छ अनि परीक्षा अघि नीट यूजी प्रश्न पत्रहरूलाई प्राप्त गर्न अनि प्रसारित गर्नमा सामेल एक कथित नेटवर्कको जाँच गरिरहेको छ। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIR न्युज कर्सिङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यो आकाशवाणी हो, अब रहल समाचार। श्री अमरनाथजी यात्रा जम्मू कश्मीरमा 3 जुलाईदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। श्री अमरनाथ यात्राका सबै तयारीहरू पूरा गरिसकिएको छ। आकाशवाणी जम्मू संवाददाताको रिपोर्ट अनुसार तीर्थयात्राका आधिकारिक प्रारम्भ अनि सुरक्षा व्यवस्था, काफिलाको आवाजाही अनि समग्र तयारीहरूको आकलनको समीक्षा गरिएको छ। दिल्लीमा घर घर गएर मतदाताहरूलाई मतदाता गणना प्रपत्र विपरीत गर्ने कार्य भोलिदेखि सुरु हुनेछ। दिल्लीको मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमारले नयाँ दिल्लीमा संवाददाता सम्मेलनमा यो जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि बुथ स्तरीय अधिकारी बीएलओले भोलिदेखि 29 जुलाईसम्म घर घर गएर मतदाता गणना प्रपत्र विपरीत गर्नुहुनेछ अनि पात्र मतदाताहरूबाट पूर्ण रूपले भरिएको आवेदन पत्र एकत्र गर्नुहुनेछ।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और

0: यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बांग्लादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भन्नुभएको छ, कानूनी मामिलाहरू मृत्युदण्डको सजाय अनि अवामी लीगका राजनैतिक गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध रहे तापनि उहाँ यस वर्षको अन्तसम्ममा बांग्लादेश फर्किनुहुनेछ। एउटा टिभी च्यानललाई दिनुभएको साक्षात्कारमा हसिनाले आफू विरुद्ध चलिरहेको मामिलाहरूलाई राजनैतिक रूपले प्रेरित भएको बताउनुभयो। फिफा विश्वकपको नकआउट चरणमा क्यानाडाले दक्षिण अफ्रिकालाई 1-0 पराजित गरेको छ। अमेरिकाको लस एन्जलसमा खेलिएको म्याचमा क्यानाडाका स्टिफन युस्टाकियोले एकमात्र गोल गरे। सह आयोजक क्यानाडाले म्याचको अन्तिम मिनटमा मजबुत रक्षात्मक खेलको प्रदर्शन गर्यो। अब क्यानाडाले शनिबार ह्युस्टनमा नेदरल्यान्ड्स वा मोरक्कोसित खेल्नेछ। विश्वकपको फाइनल 19 जुलाईमा खेलिनेछ। यो समाचार युट्युबमा @AIR कर्सिङ मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले आज साँझ राष्ट्रपति भवनमा वीरता पुरस्कार प्रदान गर्नुहुनेछ। हरियाणा र राजस्थान बीचको 3 दशक पुरानो यमुना जल फाँडफाँड परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSEले कक्षा 10 को वर्तमान ब्याजलाई त्रिभाषा नीतिबाट छुट दिएको छ। दिल्लीमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण भोलिदेखि सुरु हुनेछ। यसका साथै समाचार पूरा भयो।
2: समाचारपछि अब श्रोताहरूलाई सुनाउन लागिरहेका छौँ हिन्दी देशभक्ति गीत।

मीडियावेव 330.3 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:10 हुए हैं। एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा से हम यहीं विदा लेते हैं। शाम 5 बजे सायंकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम

0: पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार वॉमिटिंग तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है, और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना
0: बिल्कुल
1: आप कहें तो हम सुनवाएं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं,
0: जी
1: और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाएं नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खास तौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा।
0: जी
1: कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
0: जी जी
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, भावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ ऐसा?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो अभी लास्ट एटलीस्ट

0: 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते
1: जी
0: हैं। तो हम सिंपल टर्म्स में देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: कर
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही।
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्स का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है हमने, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी और एक बात डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है
0: जी। और डाइजेशन सही रखने

0: के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? तो बोले हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ,
0: जी
1: पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
0: जी
1: पानी
0: जी
1: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
1: बिल्कुल,
0: ख्याल
1: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: से। तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
0: जी
1: मेरे स्कूल के टाइम पे,
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर?
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या-क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, एक छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है कि क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, वो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो
0: जी
1: उसको 24 आवर pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द इसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती
1: तो
0: हैं?
1: कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है।

0: है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज़ नॉट रियली अ डिजीज, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत ज़रूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड, एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ,
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ
0: कहा
1: तो
0: कि
1: है, देर इज सम
0: जी हाँ
1: कोरिलेशन बिटवीन
0: ओके।
1: डाइट, नॉट
0: तो
1: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता
1: हाँ,
0: है, तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटी

0: एसिड उसके साथ।
1: जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल,
1: फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है, तो
0: हाँ।
1: ये
0: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो, और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज़ करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अल्कोहल कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है, तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक
1: जी
0: एंड
1: जी
0: अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है, तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे?
1: जी
0: धूम्रपान टबैको सेम चीज़, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर हो के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है, समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहाँ पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है, बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी। डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है, तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज़ अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है, जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खानी खान पान साफ नहीं होता है, तब तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही, ये होता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: कॉमन है, वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं।
1: जी।
0: लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो
1: जी
0: ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है, तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे, उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं।
1: जी। और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं है, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीज़ें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ
1: जी,
0: नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है, तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये

0: उसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
1: ये बेसिकली मन और आत्मा

0: अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या आप
1: जी
0: नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइंस बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी
0: हाँ,
1: या
0: तो,
1: कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं खा ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि यू कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि यू वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज जस्ट अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा है ये तेल अच्छा है, ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना है, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है,

0: कोई नुस्खा चलता नहीं है, वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
1: बिल्कुल,
0: और
1: स्टेरॉइड भी आ रहा
0: स्टेरॉइड्स
1: है,
0: भी
1: गलत
0: आता
1: होता
0: है,
1: है।
0: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो भी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को

असुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal, and Sarvottam Youth Seva Medal.
1: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं. उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में हैं श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहां पर पधारेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा. हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को पर...
2: कि लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री

0: भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के दो विमानों ने 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1450 हो गई है, हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत ना तो नहीं है और ना ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज यादव। दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं एक सुविचार से, जो गलती करके स्वीकार नहीं करते उनसे सुधरने की उम्मीद ही व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे या आपके किसी दोस्त से कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वीकारने से उसे सुधारने का मौका मिलेगा और वह गलती दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएगी। दोस्तों इस सुविचार पर आप जरूर ध्यान दें, और इस सुविचार के बाद लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है संतुलित आहार हमारे जीवन का आधार, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं वार्ताकार श्री आनंद उपाध्याय।
1: भोजन दैनिक जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता है। जो हम खाते हैं वह न केवल हमारे वजन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और जीवन की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। संतुलित और आहार से संबंधित अनुशासन शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और अर्थात बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि पोषण से भरपूर भोजन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं, संक्रमण से बचाव होता है। पोषण मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अच्छा भोजन तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है, जिससे मनोदशा में सुधार होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भोजन और आहार क्या है, उसके बाद शरीर और स्वास्थ्य को समझते हुए भोजन के प्रभाव को समझेंगे, अर्थात भोजन शरीर को कैसे प्रभावित करता है। आमतौर पर भोजन शब्द ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिससे भूख मिटाने के साथ ही साथ शरीर का पोषण भी हो, अर्थात शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो। इन्हीं पोषक तत्व को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा व तेल, विटामिन्स, आहारी खनिज, रेशा एवं जल के रूप में जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में इन्हीं पोषक तत्वों को आहार भोजन के घटक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं घटकों से मिलकर जीवों और समस्त मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक आधार पर भी कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और नीर अर्थात जल, विटामिन्स संग खनिज लवण मिलकर ये शरीर बनता है। विटामिन्स की उपयोगिता हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से ही मिलकर हुआ है। मनुष्य अत्यधिक अनुकूलनीय सर्वहारी है। मनुष्य अपने अनुकूलता के आधार पर ही आहार को ग्रहण करता है। विभिन्न परिस्थितियों में भोजन प्राप्त करने के लिए खुद को अनुकूलित भी कर लिया है मानव ने। जैसे जैसे मानव ने तकनीक का विकास किया है, वैसे वैसे उपलब्ध कृषि अवसरों के अनुरूप भोजन शैली का विकास किया है।

भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण अनेक प्रकार के व्यंजन और पाक कलाओं का विकास हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, मसाले एवं जड़ी बूटियां शामिल हैं। बढ़ते व्यापार के कारण संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिश्रण से भोजन एवं खानपान की परंपराओं तथा प्रथाओं में हुए बदलाव से भोजन एवं भोजन करने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। इस बदलाव ने मानव शरीर एवं मानसिक तथा सामाजिक आदि क्षेत्रों को प्रभावित किया है तथा कर रहा है। इस बदलाव को हम सभी लोग अपने परिवेश में या होने वाले समारोह में देख सकते हैं। व्यस्त जिंदगी में व्यक्ति ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों एवं जंक फूड को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। जो खाद्य वस्तुएं विभिन्न प्रकार से डिब्बा या पॉलीथीन में मशीनों के द्वारा बंद की जाती हैं, उन्हें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहा जाता है। जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अपनी जीवन शैली बना लेने वाले व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तली भुनी चीज़ें अधिक खाता है या फिर जंक फूड का अधिक सेवन करता है, उसके शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम क्लोराइड्स इत्यादि पोषक तत्वों की अधिकता होने लगती है, जबकि विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। सोडियम और हानिकारक वसी अम्ल, विशेषकर संतृप्त वसा जिसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और ट्रांस फैट स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह हृदय के लिए हानिकारक होता है क्योंकि ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है, अथवा दिल के दौरे और धमनियों में रुकावट होने लगती है। मधुमेह और मोटापा भी बढ़ सकता है। यह खून के थक्के, जमने तथा सूजन का कारण भी बन सकते हैं। बच्चे, किशोर, किशोरियों या फिर युवा गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, पालक, बथुआ, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। उनका शरीर विभिन्न विटामिन्स और आहारीय खनिज तत्वों की कमी से रोगी हो जाता है। जैसे विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। विटामिन ए और सी, ई की कमी जब शरीर में होगी तब आंखों की रोशनी कम हो सकती है या आंखों में जलन, सूखापन आदि इत्यादि हो सकता है। कह सकते हैं कि आंखें खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार विटामिन B2 की कमी से होठ फटने लगते हैं। यदि शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो पायरिया रोग हो सकता है, जबकि विटामिन सी का स्रोत आंवला, नींबू आदि खट्टे फल होते हैं। यदि विटामिन सी मुख्य रूप से ज्यादा कम होता है तब मसूड़े भी कमजोर हो जाते हैं और खून भी आने लगता है। इसी प्रकार से जो बच्चे लगातार AC में बैठे रहते हैं और धूप में कम निकलते हैं, उन बच्चों के शरीर में या व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, अर्थात बच्चे हों या व्यक्ति या कोई अन्य, सभी लोगों को कम से कम धूप में सुबह में निकलना चाहिए। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी मांसपेशियों में ऐंठन और अनावश्यक थकान होने लगती है। चलने में लड़खड़ाहट और गिरने का खतरा बना रहता है। पालक, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग आदि हरी पत्तेदार सब्जियों को न खाने वाले व्यक्ति के शरीर में विटामिन B9 फॉलिक, जिसे फॉलिक अम्ल कहते हैं, और आयरन जिसे लौह तत्व कहते हैं, या आयोडीन आदि पोषणीय या आहारीय खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। इन खनिज तत्वों की कमी से शरीर में सर्वप्रथम खून की कमी होती है, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में लौह तत्व या आयरन, कॉपर एवं फॉलिक अम्ल की कमी से मुख्य रूप से खून की कमी हो जाती है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होगी तब व्यक्ति को थायराइड्स हार्मोन्स कम बनने लगता है। थायराइड हार्मोन की कमी से गलघंट रोग हो जाता है। शरीर का वजन बढ़ने लगता है और थकावट महसूस होती है। बालों का झड़ना और मानसिक सुस्ती भी हो सकती है। बच्चों में आयोडीन की

कमी से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। स्त्रियों में अनियमित मासिक धर्म हो सकता है। कभी कभी गर्भधारण की समस्या भी हो सकती है। बच्चों में कुपोषण के कारण प्रोटीन्स, यदि बच्चों को प्रोटीन्स और खाने का आहार जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या कहेंगे दाल चावल रोटी भी कम मिलती है, तब ऐसे बच्चों को मैरस्मस रोग या क्वाशर को रोग हो सकता है। क्वाशर रोग में बच्चों का पेट बाहर निकलता है, चेहरा और पैर सूजन या कहेंगे चेहरा और पैर में सूजन आ सकती है। मैरस्मस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में बच्चों को ना ही प्रोटीन मिलती है ना ही भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस कारण शरीर बेहद कमजोर हो जाता है और सिर्फ दूर से देखने पर हड्डियों का ढांचा नजर आता है। इस रोग का मुख्य आधार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की अत्यधिक कमी हो जाती है। जब व्यक्ति के आहार में मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, तांबा एवं विटामिन डी या विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, तब शरीर में इंसुलिन के उत्पादन में भी कमी आ जाती है। बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जैसे सॉस, केचप, जैम, जेली, अचार, डिब्बेबंद फल व फलों का रस एवं दुग्ध उत्पादों, पनीर या नमी वाले इत्यादि पदार्थ जो डिब्बे में बंद होकर के आते हैं, उनमें सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट को मुख्य रूप से मिलाया जाता है। बाजार में जो बच्चे भुजिया ज़्यादा खाते हैं बाजार से लेकर के, उनमें और जो भी नमकीन आती है उसमें भी टेरिटरी ब्यूटाइल्स हाइड्रोक्यूनोन्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे भुजिया सुरक्षित रह सके। इसके अलावा ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टॉयल्यून्स रसायन भी मिलाया जाता है। इन रसायनों की वजह से भुजिया हो या डिब्बा बंद पदार्थ हो, उनकी सुगंध, रंग और स्वाद अपने मूल रूप में महसूस होते हैं और इस प्रकार बार बार जो पदार्थों को खाता है, चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या कोई और भी हो, तो शरीर में एक नियमित मात्रा से अधिक ये रसायन पहुंचने लगते हैं। तब इस स्थिति में ये शरीर के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। असुरक्षित भंडारण और अधिक रसायन की वजह से कैंसर जैसे रोग भी घातक हो जाते हैं। घरों में असुरक्षित भंडारण, चाहे वो घर की रसोई हो या बाजार में विक्रेताओं का स्टोर या फिर ठेले पर बिकने वाली खाद्य सामग्री पर स्वच्छता का ध्यान न देने पर भी भोजन और पानी बैक्टीरिया या फफूंदी से दूषित हो सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार जिसे डायरिया कहा जाता है, पेचिश आदि घातक रोग हो सकते हैं। जो व्यक्ति मांस या दूषित सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन सब्जियों में परजीवियों के लार्वा भी हो सकते हैं, जो पेट में पहुंचकर शरीर को रोगी बना सकते हैं या शरीर में गंभीर घातक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। जैसे यदि शरीर में एस्कैरिस के लार्वा पहुंचेंगे तो एस्कैरिसिस रोग हो सकता है, अथवा फाइलेरिया के लार्वा होंगे तो फाइलेरिया हो सकता है, जिसे सामान्य भाषा में हाथी पांव रोग कहा जाता है। इसी प्रकार से डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जब कई दिनों तक फ्रिज के अंदर बने रहते हैं तो बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। फ्रिज में गलत तरीके से खाना रखने या गंदे फ्रिज के कारण फूड पॉइजनिंग जैसे सर्दी, खांसी या फिर अपच या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें साल्मोनेला बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और यह बैक्टीरिया गंदे फ्रिज के ड्रॉवर में पनपते हैं, जो भोजन को दूषित या संक्रमित करता है। खराब तरीके से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ या संरक्षित या सड़े हुए खाद्य पदार्थ खाने से क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म बैक्टीरिया से बॉटुलिज्म बीमारी हो सकती है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से वातावरण में रहता है जहां वायु या हवा ना हो, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि फ्रिज में अधिक दिनों से बंद डिब्बों वाले भोजन को उबालकर ही खाना चाहिए। भोजन करने से पहले भोजन को जाने अर्थात
सावधान।

0: हानिपूर्वक भोजन तैयार करें और भंडारण कक्ष फ्रिज की समय समय पर सफाई करते रहें। अपने भोजन में दाल वाली फलियां, पत्तेदार हरी सब्जियां और सलाद को अवश्य शामिल करें और मौसमी फल अवश्य सेवन करें।
1: इस वार्ता के बाद दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हम बातें करेंगे करियर की। करियर की बातों में आज हमने जो विषय लिया है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आप जानते हैं AI आज हमारे फोन से लेकर कारों तक हर जगह है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले AI होता क्या है। AI कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बनाता है जो इंसानों जैसा सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। उदाहरण के लिए स्मार्ट असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट AI पर ही चलते हैं।

0: भारत में एआई का बाजार 2025 तक 7 अरब डॉलर हो चुका है और 2030 तक 50 अरब तक पहुंच जाएगा। एआई में करियर के लिए 10वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम चुनें, खासकर मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ग्रेजुएशन में आप बीटेक कर सकते हैं, एआई डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस करें, जो भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी उपलब्ध हैं। इस कोर्स के करने के बाद आपके ढेरों जॉब ऑप्शंस हैं। अब एआई इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स जो रोबोट डिज़ाइन करते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो डेटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, एनएलपी स्पेशलिस्ट जो चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट बनाते हैं। इस क्षेत्र में ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो आप करके सर्टिफाइड एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं। भारत में ढेर सारी कंपनियां हैं जो एआई के प्रोफेशनल को हायर करती हैं। आप चाहें तो इस क्षेत्र में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। एआई तेजी से बदल रहा है तो लगातार सीखना पड़ेगा। एथिक्स का ध्यान रखें, अवसर अनगिनत है। स्टार्टअप्स में ज्वाइन करें या अपना एआई बिजनेस शुरू करें। तो श्रोताओं, एआई में करियर चुनें और दुनिया बदलें।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM

अभी वह साथी सुने थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: चंदन का एहसास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: घर आंगन सुनने वाली सब श्रोता बहन सबके मनीषा का नमस्ते। बहन आज 29 जून हवे और आज के दिन जौन हवे अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनावल जाला। बहन पृथ्वी के केंद्र के निकट कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जौन भूभाग होला ना, वही के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहल जाला। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशिष्ट जलवायु और असीमित संसाधन की खातिर जानल जाला। बहन उष्णकटिबंधीय देशन के सामने आवे वाली चुनौतियन के यह क्षेत्र के महत्व के उजागर करे की खातिर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हर साल 29 जून के अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनावल गईल। एकर महत्वपूर्ण हिस्सा हवे पारिस्थितिक तंत्र, इन क्षेत्रन का विशेषता हवे जैव विविधता, जल संसाधन, जनसंख्या और संस्कृति का केंद्र। और अनुमान हवे कि आवे वाले दशक में दुनिया का अधिकांश जनसंख्या और युवा का बड़वर हिस्सा यही क्षेत्र में निवास करी। अपनी समृद्धता के बावजूद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आज भी कई समस्या का सामना करे के पड़ल बाटे। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला और बुरा असर यही क्षेत्रन पर पड़ेला। अंधाधुंध जौन शहरीकरण होता और वनन का कटाई होता, एकरी कारण भी यहाँ अद्वितीय जैव विविधता का भारी खतरा हो रहल बाटे। विश्व के नवीनीकरण जल का बड़ा हिस्सा होवे के बावजूद यहाँ का आधी आबादी जल संकट और कुपोषण का मार झेल रहल बाटे। ये दिवस का मुख्य उद्देश्य हवे देश और शोधकर्ताओं और आम जनता के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रन के सतत विकास की खातिर प्रेरित कईल और एकरी खातिर सबसे पहले वन का कटाई के रोके के और वृक्षारोपण पर बल देवे के, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटे की खातिर विज्ञान आधारित नीतियन के अपनावल जा सके और जल संसाधन के प्रबंधन का संरक्षण कैल जाए। स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर के ऊपर उठावे और उनकरा के पर्यावरण संरक्षण के भागीदार बनावे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब जरूरी बाटे। तो देखा बहन, हमन का अपनी बैठकी में बात तो करबे करी ना जा, और भी बात करे के, लेकिन मन मनसायन खातिर पहले सुन लिया जाएगो गीत।

0: हाँ बहन, देखा अपनी बैठकी में मन मनसायन भइल, और यही क्रम में अपनी बैठकी के आगे बढ़ावल जा, सुनवा दिहल जा वार्ता मोटा अनाज का महत्व। यह पर जानकारी देता रही डॉक्टर अंजलि वर्मा।
1: आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनाज के बारे में जो हमारे खेतों में सदियों से उपजाया जा रहा है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में कहीं पीछे छूट गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटे अनाजों, श्री अन्न की। मोटे अनाज को अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं। श्री अन्न या मोटे पौष्टिक अनाजों को दो वर्गों में बांटा गया है, अर्थात बड़े पौष्टिक अनाज और लघु पौष्टिक अनाज। बड़े श्री अन्न में ज्वार और बाजरा एवं लघु श्री अन्न में मड़ुआ, रागी, कंगनी, कुटकी, चेना, कोदो, सावा, झिंगोरा आदि शामिल होते हैं। ये सभी मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। भारत में इन्हें परंपरागत आहार का हिस्सा माना जा रहा है और अब तो दुनिया इन्हें सुपर फूड भी कहकर पुकार रही है। ये अनाज पोषण से भरपूर होते हैं तथा पौष्टिक औषधीय गुण दर्शाते हैं। सामान्यतः चावल तथा गेहूं की तुलना में श्री अन्न में बेहतर पौष्टिक गुणवत्ता होती है। ये पौष्टिक तत्वों का पावर हाउस होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हैं। श्री अन्न की विशेषताओं एवं लाभ को देखते हुए उन्हें उत्तम आहार अथवा स्मार्ट फूड भी कहा जाता है। ये किसानों, उपभोक्ताओं एवं पर्यावरण सभी के लिए उत्तम है। श्री अन्न के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन में इनमें शामिल करने से कुपोषण दूर होने के साथ साथ मोटापा बढ़ने की समस्या से भी निजात मिल जाती है। मोटे अनाज को आप कहीं भी उगा सकते हैं। इसे सूखे क्षेत्र, वर्षा क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। भारत मिलेट का विश्व में अग्रणी उत्पादक और पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मोटे अनाज की खेती राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि कई राज्यों में होती है। संयुक्त राज्य द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था, जिससे पता चलता है कि अब दुनिया भर में मोटे अनाज को फिर से महत्व दिया जाने लगा है। मोटे अनाज की फसल के फायदे भी कई हैं। ये न्यूनतम उर्वरक के इस्तेमाल के साथ साथ पानी के लिए बारिश पर निर्भर फसल है। कीड़ों के हमलों की कम आशंका होने की वजह से इसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मोटे अनाज के बीज का भंडारण कई वर्षों के लिए भी किया जा सकता है, जिससे सूखे की आकांक्षा वाले क्षेत्रों के लिए ये लाभदायक होते हैं। सतत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज्यादा पोषण के गुण वाले मोटे अनाज से जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और सूखे की स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होता नजर आ रहा है। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होती है। इसका सेवन मानव सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर हम बात करें तो इन अनाजों में ऊर्जा लगभग 307 से 347 किलो कैलोरी तक होती है। भिन्न भिन्न मोटे अनाजों में पोषण की दृष्टि से इसमें लगभग 60% तक कार्बोहाइड्रेट, 6 से 10% तक प्रोटीन, 1 से 5% तक वसा और 1 से 2% तक सूखी राख पाई जाती है। यही नहीं, इसमें कुल पथ्य रेशे 6% तक होते हैं। श्री अन्न या मोटे अनाज सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तथा विटामिन बी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभयुक्त पादप रसायनों के भी अच्छे स्रोत होते हैं। पादप रसायन मतलब फाइटोकेमिकल जिन्हें हम कहते हैं। विटामिन बी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभयुक्त पादप रसायन के ये अच्छे स्रोत हैं। इनसे बच्चों के खून की कमी दूर होती है और कोलेस्ट्रॉल का भी नियंत्रण होता है। मोटे अनाजों ने पश्चिम में लोकप्रियता बहुत हासिल की है क्योंकि ये ग्लूटेन मुक्त, उच्च प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट सामग्री से युक्त होते हैं। मोटे अनाज जो है शरीर की अम्लता, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, दूर करने में भी सहायक होते हैं। अधिक रेशे युक्त होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं, साथ ही उससे संबंधित हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी में अन्य अनाजों की तुलना में अधिक रेशा या फाइबर पाया जाता है। अन्य अनाज जैसे आपके गेहूं हो गया, चावल हो गया इत्यादि। कैल्शियम की कमी खासकर गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी और उक्त रक्तचाप का कारण बन सकती है। रागी तथा ज्वार इस समय सबसे अच्छे कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, जिससे हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। मोटे अनाजों का नियमित सेवन करने से अस्थमा रोग, डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कैंसर रोग आदि से मुक्ति दिलाने में बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ है। साथ ही मोटे अनाज मोटापा कम करने में, पाचन तंत्र में सुधार करने में, किडनी, लीवर और इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। अध्ययनों से या

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

0: ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अभी आप सुनत रहने अपनी बैठकी में ये वार्ता, मोटा अनाज का महत्व, यह पर जानकारी देत रहले अंजलि वर्मा। देखो, मोट अनाज का अपने जीवन में का महत्व होला, ये अगर आप जानकारी लिखले बानी तो आप जोन बाटे प्रसन्न हो जाए कि एकर लाभ भी बाटे। और देखिए, अपनी बैठकी में बात तो और करे के, लेकिन पहले मन मनसान का तीन फिर से सुन लिहल जाएगो गीत।

देखा अपनी बैठकी में अभी सुनल गल वार्ता एकरी खातिर इनकरा के दियल जा धन्यवाद और बैठकी के आगे बढ़ाओल जा और सुन लिया जा फिर से एगो गीत।

हाँ बहन देखा, अपनी बैठकी में मन मनसान भी भइल, लेकिन यह समय जौन बाटे देखा मौसम बदल रहल बा, कभी बारिश कभी गर्मी, तो एहमा सबसे जरूरी होला कि अपनी स्वास्थ्य के भी हमने के ठीक रखी जा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाई जा, ताकि जौन बाटे कोनो तरह का बीमारी ना होके। एकरी खातिर बहन आप भोजन में आपन संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पी, काहे कि देखी कभी गर्म बाटे कभी मौसम जौन बाटे खराब हो जाता टे कभी बारिश को हो जाता, तो नियमित जौन बाटे यह पर ध्यान दें और व्यायाम भी करें, काहे कि बदलते तापमान के बीच में अचानक जौन परिवर्तन होला उसे संक्रमण और मौसमी बीमारी भी होके का खतरा बढ़ जाला, तो एकर ध्यान रखें। देखिए अपनी बैठकी में बात तो और करे के रहा, लेकिन हमने के समय से बदल बानी जा और समय इशारा कर रहल बा आप सबसे विदा लेवे के, तब फिर मिले के, तब तक खातिन बहिन सबके नमस्ते।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 66 विकास परियोजना के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहलन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डबल इंजन का सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान आ महिला लोगिन के सतही समाज के हर वर्ग के विकास बदे कार कर रही हो। वहाँ के कहने कि कनेक्टिविटी में जितने गति हुई उतने तेज प्रगति हुई।
1: याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और वह इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया। मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। ये है गति, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल स्पीड के साथ चलती है, विकास भी लाती है, विरासत को भी सम्मान देती है।
0: ए मौका पर मुख्यमंत्री पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित परिवारन के जमीन आ नागरिकता प्रमाण पत्र देने, साथ ही वहाँ के कई गो योजनन के लाभार्थियन के चेक आ प्रमाण पत्रों बटनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के बैठकी का अध्यक्षता करत एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा आ ईवी चार्जिंग के साथ ही कई गो और परियोजनन के प्रगति को समीक्षा कैले।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आवश्यक अनुमतियों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार सुनिश्चित करने तथा निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मिलल दान में कथित वित्तीय हेराफेरी से जुड़ल एगो जनहित याचिका पर जुड़ते सुनवाई से मिना कह दिल। याचिका में अदालत के देखरेख में वित्तीय हेराफेरी का जांच आ गहन लेखा परीक्षण का मांग कैल गई है। न्यायमूर्ति M.M. सुंदरेश आ शील नागू का बेंच याचिका के जुड़ते सुनवाई पर सवाल उठावत कहलस कि गर्मी के छुट्टी के बादे अदालत के खुले पर याचिका के सूचीबद्ध कैल जाय। एह बीचे अयोध्या का अधिवक्ता संघ फैसला ले ले हो कि मामला में नामजद कौनहू आरोपी के ओर से संगठन से जुड़ल कौनो वकील पैरवी नहीं करी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी कैले हवे। बोर्ड कहलस कि कक्षा 10वीं के ए समय के बैच के नई भाषा नीति का पालन नहीं करे के होई। बोर्ड इहो कहलस कि कक्षा 7वीं, 8वीं आ 9वीं में पढ़ी रहल ए समय के बैच के छात्रनों के कक्षा 10वीं में पहुँचले पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देले का जरूरत नहीं होई। केंद्र सरकार विधिक मापन अधिनियम 2009 के तहत सुधार सूचना व्यवस्था लागू कैले हो। ई प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 के ओर से लागू कैल गेल बा। एगो रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापार

0: बड़ियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में बिहने से लेके 3 जुलाई ले अनेक जगहिन पर बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ले क संभावना जतौले हो। विभाग 2 जुलाई ले कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलले क ऑरेंज अलर्ट जारी कैले बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 66 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी में जितनी गति होगी उतनी ही तेज प्रगति होगी।
2: याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और वह इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया। मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। ये है गति, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल स्पीड के साथ चलती है, विकास भी लाती है, विरासत को भी सम्मान देती है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों को भूमि तथा नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आवश्यक अनुमतियों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार सुनिश्चित करने तथा निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीन लागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच अयोध्या के अधिवक्ता संघ ने फैसला लिया है कि इस मामले में नामजद किसी भी आरोपी की ओर से संगठन से जुड़ा कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। यह प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। एक रिपोर्ट।
0: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि

0: निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल से लेकर 3 जुलाई तक अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने 2 जुलाई तक कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स पर तथा FM 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बारी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: पंचों जय जवान जय किसान।
8: हाँ हाँ भाई, देखा योगिंदर जोन बाटे की आज अपनी बैठकी में अमन का पंच भाई से बात करे के।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
8: और कौनो न कौनो करते रहनी जाता। देखा आज चर्चा करे के कि तालाब का प्रबंधन कैसे हो।
7: बहुत बढ़िया बात बतौनी कि अगर पंच भाई खेती बाड़ी के साथ साथ मछली पालन भी करता है या तालाब में कौन ऐसा पालन करता है तो ओकर प्रबंधन बहुत जरूरी होला।
8: बिल्कुल,
7: ओमे सबसे जरूरी होला कि देखल जाए कि पानी के जो गुणवत्ता बा तालाब में वो सही होके चाहिए। साथ ही साथ अगर पंच भाई मछली लगाता है या अन्य कोनो जली जीव के पालन करता है तो ओकर विशेष रूप से समय समय पर देखभाल कर जरूरी होला।
8: बिल्कुल, जैसन कि कहल जाता है कि मतलब जो तालाब का पानी रहे वो बढ़िया होके शुद्ध हो,
7: साफ सुथरा होके।
8: हाँ, साफ सुथरा होके, वो में कोनो तरह का जो बाटे कि गंदा चीज न रहे, वो कभी सफाई करते रहे,
7: बहुत ध्यान
8: दे, ताकि जो बाटे वो माँ अगर आप मछली पालन कर चाहता या फिर ऐसे भी पानी बाटे तो वो साफ सुथरा रही तो कोनो तरह का कोनो प्रकोप ना हो, कोनो मतलब जो बाटे कीड़ा जो और होला ना तो तालाब में ना हुई। अब मछली पालन का व्यवसाय किसान भाई करबो करे।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
8: तो का चीज वहाँ सबसे जरूरी होला ई अपनी पंच भाई से बताओ।
7: बिल्कुल, सबसे जरूरी है कि सबसे अपने तालाब में जो पानी बा ओकर गुणवत्ता खातिर पानी के जांच होला, जो कि pH मान कहल जाला। तो pH मान जो बा पानी के 6.5 से लेकर 8.5 के बीच ही रहे के चाहिए। एक पानी शुद्ध मानल जाला। अगर पानी के pH मान बढ़ गए बा, अम्लीय हो गए बा, तो में चूना का प्रयोग भी कर जा सकेला ताकि पानी साफ सुथरा हो सके। मुख्य रूप से गर्मी के दिन में देखे के मिलेला कि ऑक्सीजन का स्तर घट जाला, उसे अक्सर देखे के मिला कि मछली मर के तालाब के किनारे दिखाई देनी। तो ऑक्सीजन के स्तर का भी समय समय पर जाँच करने की जरूरत होला। और साथ साथ पंच भाइयों से यह कहेगा कि पानी अगर गंदा हो जाए तालाब में तो ओकर बाहर निकासी करके नया पानी तालाब में रखें।
8: जैसे तालाब में देखता है कि जो जलीय पौधा बना वो भी वो उगावे ना।
7: बिल्कुल,
8: और जो बाटे काई लग जाला तो ओकर नियंत्रण कैसे।
7: बिल्कुल, जलीय पौधा के बात करें तो मुख्य रूप से अगर तालाब में अगर तालाब के किनारे कौन ऐसा पौधा बना छोटा मोटा तो उसे दिक्कत ना होला। लेकिन अगर पूरे तालाब में जलकुंभी का प्रभाव बढ़ गया बा तो ऊपर से जो सूर्य की रोशनी होला नीचे ना पहुँच पाले वो अपने तालाब में मछली खातिर काफ़ी नुकसान होला। तो

0: भी साफ सफाई कल जरूरी होला। साथ ही साथ पंच बैलेंस यह कहेगा कि संतुलित आहार के जरूरत होला। अपने तालाब में जौन भी जीव पल्ले बाणी जली जीव, तो संतुलित आहार जौन भी बाजार से उपलब्ध बा ओके उपलब्ध कराई अपने तालाब में। साथ ही साथ अच्छा लाभ लेव खातिर अच्छा किस्म का प्रजाति भी होके चाहिए मछली के। अगर सही प्रजाति रही तो उसे बढ़िया लाभ मिल सकेला।
1: बिल्कुल, और तालाब के चारों तरफ भी साफ सफाई का ध्यान रखें। तो अगर इस तरह का आप ध्यान देतानी, तो अगर आप मछली पालन करतानी तो वहाँ कोनो तरह का नुकसान ना होई, और साथे साथे जो उन बाटे आपका व्यवसाय भी अच्छा होई
0: बिल्कुल
1: और प्रबंधन भी तालाब का बढ़िया रही। तो देखा भाई, अपनी बैठकी में जोन बाटे हम उनका चर्चा कर ना जा, कुछ ना कुछ ऐसा लाभ वाली जानकारी
0: जानकारी
1: भी
0: भी दिया
1: दिया
0: जा
1: जाए।
0: रहा।
1: तो आज अपनी बैठकी में सुनवा दिया जाए भेंटवार्ता धान में लगने वाले प्रमुख कीट व रोग, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह से इनसे बातचीत करता ना कृष्णचंद।

0: किसान भाई धान खरीफ के मुख्य फसल हवे। जे भी धान के फसल लगावेला ओकरे पीछे ही मंशा रहेला कि धान के फसल से बढ़िया उत्पादन मिले। लेकिन धान के फसल में कई गो कीड़ा के प्रकोप हो जाला, कई गो बीमारी के भी प्रकोप देखे के मिलेला, जौना के वजह से जौन अपेक्षा रहला वह अनुसार उत्पादन नहीं मिल पावला। धान के फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन कीड़ा लगेला, कौन कौन रोग लगेला, आज यही विषय पर जानकारी देव खरतीन अपने बैठकी में आयल बाटे डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र बसली जनपद महाराजगंज में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके हमरे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानल चाहब कि धान के फसल में मुख्य रूप से कोने कोने कीड़ा का प्रकोप हो सकेला।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। धान चूंकि खरीफ की मुख्य फसल है, इसमें रोग बीमारी कीड़े बहुत आते हैं
0: जी।
1: जो कीड़े की बात है, इसमें कीड़े में गंधी बाग, सैनिक कीट, बाली जो काट देता है, पत्ती लपेट कीट जो पत्तियों में लपेट करके उनको उनका हरापन खा जाता है, इसी क्रम में फुदका जो है, तीन तरह के फुदके होते हैं, हरा फुदका, भूरा फुदका और सफेद फुदका।
0: डॉक्टर साहब, हम आपसे बीच में जानल चाहब, आप पत्ती लपेटक का चर्चा कर ली है।
1: हाँ।
0: एक पंच भाई कैसे पहचानी है कि पत्ती लपेटक का प्रकोप हो गया बा?
1: ये है कीड़ा, चूंकि यह कीड़ा पीले हरे रंग का शरीर का और गहरे भूरे सिर वाला 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और इसकी हानिकारक अवस्था जो होती है वो सुंडी है। यह पत्तियों के दोनों किनारों को चटा देगा अपने जाले से और उसमें नाली बना देता है, और नाली बनाने के बाद उसका जो हरा पदार्थ है वह उसको खा जाता है। चूंकि हरा पदार्थ पौधों में पोषक तत्व संग्रहित करने का काम करता है, जब हरा पदार्थ नहीं रहेगा तो वह पौधा फल नहीं देगा, और इसका जीवन काल 20 से 30 दिन तक होता है।
0: आप गंधी बग का चर्चा कर ली है।
1: हाँ।
0: एक कैसे पंच भाई पहचानी है और कौने अवस्था में एक लगले के संभावना ज्यादा रहेला?
1: गंधी बग की हानिकारक अवस्था शिशु और प्रौढ़ है। यह जब हमारी बालियों में दुग्धावस्था में बालियां रहती हैं, तो यह इससे रस चूस लेते हैं, और रस चूसने के बाद उसमें जो हमारे लोग कहते हैं पहिया पड़ गई, तो पहिया इसी गंधी बग कीड़े के कारण होती है। इसके निदान के लिए हमें जब फूल आने के बाद दानों में दुग्धावस्था हो, प्रति 2 से 3, आप जानते होंगे पौधे का एक हिल होता है
0: पूजा,
1: वो 2 से 3 यदि आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें सुबह मीटिंग में मेलाथियन पाउडर या फेन रिमूवेबल पाउडर का 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बुरकाव कर देंगे, तो इससे आपको फायदा मिलेगा।
0: एगो और चर्चा कर लिया आप सैनिक कीड़ा के, तो ये तो जब बाली निकलेला तो वो समय लगेला, लेकिन पंच भाई अब अहने से जोन बा एक दिमाग में रख ले रहे हैं, का जोन बा सावधानी बरतें पहले से ताकि एकर प्रकोप ना होके पावे?
1: बाली काटने वाला कीड़ा जो है, इसको हम सैनिक कीट कहते हैं, इसकी इस डैमेजिंग स्टेज सूढ़िया है, मतलब इसका नुकसानदायक अवस्था। यह दिन में जो है यह आपके जमीन में दरारों में या कहीं कल्लों में छिपी रहेगी, और शुरुआत अवस्था में यह पत्तियों को काटती है, परंतु धान में जब पकने की अवस्था आती है सायंकाल की अवस्था में यह आपके बालियों को काटकर गिरा देती है। ऐसी दशा में फसल का उत्पादन का नुकसान होता है। इस कीड़े का रंग भूरे पीले अथवा गहरे भूरे रंग का इसका सिर होता है, इसके साइड में लाइन बनी होगी दोनों साइड में, तो इसका ये कारण है। किसान भाई देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पत्ती लपेटक कीट के बारे में बताया, गंधी बग के बारे में बताया इनके, और तीसरा हमने बाली काटने वाले कीड़े जो सैनिक कीट कहते हैं, इनके बारे में मैंने बताया, तो आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हम पोषक तत्वों का जो हम नाइट्रोजन, यूरिया और पोटास और फास्फोरस देते हैं, इसका यदि हम संतुलित मात्रा में प्रयोग करें तो ये पत्ती लपेटक कीट या आपके दूसरा जो मैंने आपको गंधी बग बताया

0: इस पर हम काफी नियंत्रण कर लेंगे। इसके लिए हमें 2:1:1, मतलब यदि हम 120 केजी यूरिया दे रहे हैं तो हमें 60 केजी पोटास और 60 केजी हमको एमओपी देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, तना बेधक कीड़ा का भी प्रकोप होखेला धाने में, ये कोना तरह से जनवा धाने का फसल के नुकसान पहुंचावेला, और अपन किसान भाई कैसे जाने, कैसे पहचाने कि तना बेधक कीड़ा हवे?
0: तना बेधक कीड़ा की जो हमारी नुकसान, देखिए हर कीड़े की एक जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र में तना बेधक कीट जो है उसकी सूंड़ियां हमारे तनों के जमीन से थोड़ी ऊपर से वो डंक मारेंगी, और डंक मारने से वो पौधा हमारा उसके जो बीज का होगा आप उखाड़ेंगे तो आसानी से वो उखड़ जाएगा और उसमें बदबू आता है। यह कीड़ा, इसकी जो मादा होगी उसका पंख जो होगा पीले रंग का होगा, और इसकी सूंड़ियां हल्के पीले नारंगी शरीर वाली होती हैं। वानस्पतिक जो हमारे पौधे की अवस्था होती है उनमें इनका ज्यादा प्रकोप रहता है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो बात करते हैं रासायनिक कीड़े, प्राकृतिक मित्र में ट्राइकोडर्मा जपोनिकम एक है जो 2.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर, मतलब एक कार्ड में 20,000 अंडे होते हैं
1: जी जी।
0: तो 50,000 अंडे एक हेक्टेयर में यदि हम जगह जगह पर लगा दें 30 दिन तक और एक हफ्ते पर उसको बदलते रहें तो हमारा यह जो मित्र कीड़ा है इनका भोजन है वो ये खा जाएगा।
1: ये कार्ड मिली कहाँ से?
0: कार्ड मिलने के लिए जैसे जैविक भवन है या जहाँ भी जैविक है या जहाँ भी लैब है बायो कंट्रोल लैब, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती है। और इसके लिए चाहिए तो यहाँ गोरखपुर में खजनी में जैविक भवन है वहाँ भी मिल जाएगी, या नरेंद्र देव में आप जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, या हमारे केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ भी जनपद स्तरीय कार्यालय है वहाँ पर भी आप संपर्क करेंगे तो वो उपलब्ध करवा देंगे।
1: अगर कुछ पैसा भी देव पड़ी कि फ्री में मिल जाएगी?
0: नहीं, जो यदि सरकारी संस्थान से आप जाते हैं लेते हैं तो इसको 1-2 कार्ड हम फ्री आपको देते हैं।
1: अच्छा, आप फुदका का भी चर्चा करते हैं, कई तरह का फुदका लगन है, एक प्रबंधन कैसे कर जाए?
0: फुदका देखिए, फुदका 3 तरह का होता है। फुदका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान भाई आप देख रहे होंगे इसमें 3 तरह के फुदके होते हैं, एक हरा फुदका, दूसरा भूरा फुदका और तीसरा सफेद फुद। हरा फुदका जो है वह टुंगरू वायरस का कैरियर है, यह इसलिए नुकसानदायक है। जितने भी फुदके हैं इनकी शिशु और प्रौढ़ दोनों हमारी पत्तियों से रस चूसते हैं। इसी तरह भूरा फुदका है, भूरा फुदका देखते होंगे कि वह ऊपर से पत्तियों को जला देगा और
1: जी जी।
0: फसल बैठ जाती है, एक पैच में आप देखते होंगे बर्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हापर बर्न। यह भी हमारा जो कीड़ा है वो ग्रेसी स्टैंड वायरस को ट्रांसमिट करने में सहयोग करता है। इसी तरह सफेद फुदके हैं, यह भी पत्तियों में इनको गोफे में जाकर बैठ के इनको रस चूस के पौधों को सुखा देते हैं। इनके लिए प्रबंधन के लिए हमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा, 1.5 ml प्रति हेक्टेयर की दर से नीम आयल 10-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, उससे फायदा होगा। या कार्टेफ हाइड्राक्लोराइड एक आती है, हाइड्राक्लोराइड का 4G का 18.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमको फायदा मिलता है, यह जमीन में मिलाना है। दूसरा, आपको एक आती है इमीडा क्लोरफीड 17.8 SL वाली दवाई, वह 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देंगे तो यह आपको ये जो जितने भी फुदके हैं इसके नियंत्रण होगा। और दूसरी चीज कि जब भी दवा डालें घोल वाली दवाई तो टेम्परेचर दिन का दोपहर का हो, धूप हो, उमस हो, ऐसा ना हो कि दवा डालने के 1 घंटे आधे घंटे बाद बारिश हो जाए तो उसमें चूंकि धान का पत्ता चिकना होता है और यदि इसमें कुछ न कुछ घर में शैम्पू सरफ आप इसमें दवा के साथ मिला लेंगे तो यह पौधों को संपर्क में बनाएगा। और दूसरी चीज कि यह कम से कम 3 से 4 घंटे हमें खुला मौसम चाहिए, अन्यथा दवा डालने के बाद यदि 1 घंटे आधे घंटे में बारिश हो जाती है तो ऐसी दशा में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते।
1: दर्शक अभिन, तो बात भेल कीड़ा के, कौन कौन जोनबा कीड़ा लग सकल है
0: जी।
1: अब बात कर लिया बीमारी के
0: जी।
1: धान के फसल में जोनबा अक्सर पंच भाई चर्चा कर लें भाई की जोनबा धाने के पतई पे जोनबा धब्बा बन गए बा, बुझ नहीं पावना का हवे, ये कोना वजह से हो जाला, यह कोनो बीमारी है?
0: देखिए, इसमें 2 तरह का आता है, एक तो होता है सफेदा रोग और दूसरा होता है खैरा रोग। सफेदा रोग नर्सरी में आता है और वह है आयरन तत्व की कमी से।
1: अच्छा,
0: इसके जो नई पत्तियां होंगी वो सफेद हो जाएंगी। इसके नियंत्रण के लिए 5 kg फेरस सल्फेट को 20 kg यूरिया के साथ मिलाकर या 2.5 kg बूझे चूने को 800 लीटर पानी में मिलाकर 2-3 छिड़काव एक हफ्ता के अंतराल पर करेंगे तो इससे आपको फायदा मिला।
1: आप कह लिए कि एकर प्रकोप नर्सरी में होखेला
0: जी, जी।
1: मान ली नर्सरी से पौधा उखड़ गल बा खेते में लग गई, ऐसा स्थिति में जो ना हो सकेला, अगर हो गए तो पंच भाई क्या करें?
0: ऐसे में फिर आप ये फेरस सल्फेट का जमीन में मिलाओ कराइए तो इससे फायदा होगा
1: जी जी।
0: या इसका जो हमने बताया आपको घोल, इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाए। लेकिन जहां पर हम नर्सरी डालते हैं वहां पर इसका लक्षण, इसीलिए हम नर्सरी ऐसी जगह डालते हैं जहां हमारी वो जमीन अच्छी हो
1: जी जी। एक वजह से कहा जाला कि माटी

0: का जांच करा लिया।
1: हाँ, माटी का जांच कर। दूसरा खैर है कि यह जिंक की कमी से आती है और आप देखेंगे यह वह नर्सरी खड़ी फसल में जब आती है तो वह आप देखेंगे जैसे लगता है कि पान खाकर थूक दिया गया हो पौधे पर, उस तरह लाल हल्के गुलाबी रंग के धब्बे पड़ते हैं और धब्बे पड़ने पर वह आपको पूरे फिर बाद में वो पूरा पूरा प्लाट ही खराब हो जाता है। इस कंडीशन में हमको 5 kg जिंक सल्फेट को 20 kg यूरिया के साथ या 2.5 kg बुझे चुने के साथ मिलाकर 800 से 900 लीटर पानी में मिला देंगे। आप इसका छिड़काव करेंगे 2-3 छिड़काव 1 हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पे, तो आपको इसका फायदा मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, अपने गांव में किसान भाई बाती के चर्चा कर ले, जहाँ चार लोग बैठने जाए अनुभवी किसान भाई बात जाना ला काला भी हमारे धाने के फसल में झोंका लग गई बा, ये झोंका का होला, एकर का पहचान है?
1: झोंका देखिए, बीमारी जो फैलती है वह 2-3 कारणों से, एक तो कवक के वजह से, दूसरा बैक्टीरिया के वजह से, तीसरा वायरस की वजह से। कवक जनित बीमारी है झोंका। इसकी पहचान यह है कि पत्तियों पर आंख नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा और बीच वाला पोर्शन जैसे हमारी पुतलियां होती हैं ऐसे ही वो कालापन लेगा और ये नाव के आकार का स्ट्रक्चर बनता है और यह पत्तियों में मतलब टिप पर न होकर के पूरे पौधे पर दिखाई देगा। जब ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो ये बालियों डंठलों सब पर दिखाई देने लगता है। इसका उपचार सबसे बढ़िया हमें बीजोपचार है और दूसरा खड़ी फसल में हम जिंक मैंगनीज कार्बामेट 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका 15 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे कर दें तो इससे हमको झोंका बीमारी से निदान मिले।
0: डॉक्टर साहब, धाने के फसल में कौन कौन कीड़ा लगा लें, कौन कौन रोग लग सकल है, पंच भाई पहले से का सावधानी बरतें ताकि धाने का फसल से बढ़िया उत्पादन मिले? आप यह बारे में इतना निम्न जानकारी देनी, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ पंच भाई, बहुत निम्न जानकारी मिलल कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट व रोग, और इस पर जानकारी देते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, उनसे बतियातन भैया कृष्णचंद। एकरे खातिर डॉक्टर साहब के दिल जा धन्यवाद, लेकिन एगो गीत के साथ।

0: हाँ भाई देखा अपनी बैठकी में मन मनसान भाई,
1: बिल्कुल
0: और अपनी बैठकी के आगे बढ़ाओ जा सुनवा दियल जा भेंट वार्ता, धान की रोपाई और बुआई और खर पतवार नियंत्रण यह पर जानकारी देता ना एस के तोमर, उनसे बातचीत करता ना विनय कुमार।
1: किसान भाई, धान के रोपाई के साथ वर्षा ऋतु में सबसे बड़ी समस्या होले खर पतवार नियंत्रण का। काहे कि पानी पा के जितना भी खर पतवार हुआ वो मनमाने ढंग से निकले ना, जौन कि धान के पूरी फसल के चौपट का देना। अगर ओकर निराई गुड़ाई कराओल जा या रासायनिक नियंत्रण कैल जा, तो एके कोना तरीका से करे के चाहिए, कोना तरीका से बैठौनी करे के चाहिए, ताकि नियंत्रण आसानी से हो सके। आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर एस के तोमर, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका यह कार्यक्रम में स्वागत बा। यह समय

0: खरपतवार नियंत्रण करे खातिर कौन कौन उपाय करे के चाहिए?
1: पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा करबद्ध प्रणाम। धान में जो खरपतवार नियंत्रण की बात है, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जैसे किसान भाई, अगर रोपाई वाला धान है आपका, जहां पर आप रोपाई करते हैं, तो उसमें धान में खरपतवार सीधी बुआई के मुकाबले कम आते हैं। जहां किसान भाई रोपाई करते हैं, उसमें दो तीन उपाय किसान भाई को करने चाहिए। पहली चीज तो ये है कि किसान भाई को धान की जो नर्सरी है, वो आपको 21 दिन की नर्सरी की रोपाई करनी चाहिए। और ये ध्यान रखिए किसान भाई कि प्रति वर्ग मीटर 50 पौधे आपको लगाने चाहिए। होता क्या है, जब ठेके पर रोपाई करते हैं तो वो पौधों की संख्या कम हो जाती है, स्पेस शुरू में खरपतवार को ज्यादा मिलता है, तो खरपतवार तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसमें बहुत पैसा नहीं लगना है और इसको किसान भाई को जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज होती है रोपाई वाले धान में, जहां किसान भाई रोपाई करते हैं, वहां पर खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के जो हम बात करते हैं 3 से 5 दिन के अंदर जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, जमाव के खरपतवारों के जमाव से पहले वो खरपतवार नाशी खेत में किसान भाई को डालना चाहिए, जिसमें हम पहले ब्यूटाक्लोर यूज करते थे, अब हम जो है किसानों को सलाह देते हैं कि प्रिटलाक्लोर जो है यूज करें, इफेक्टिव खरपतवार नाशी है। और इसका किसान भाई को रोपाई के 3 से 5 दिन के अंदर इसका प्रयोग करना चाहिए। अब रोपाई के बाद किसान भाई के सामने समस्या आती है कि उस समय 3 से 5 दिन के अंदर पानी नहीं रहता खेत में, तो हम किसान भाई को बताना चाहेंगे कि पिटला क्लोर है, ब्यूटा क्लोर है, ये खरपतवार नाशी ऐसे हैं कि इनको प्रयोग करते समय खेत में पानी रहना चाहिए, 1 से 2 इंच पानी हो तो इसका प्रभाव जो है ज्यादा होता है। पिटला क्लोर की जो मात्रा है वो 600 ml प्रति एकड़ किसान भाई को प्रयोग करनी चाहिए। और प्रयोग करने का तरीका जो होगा वो होगा कि आप इसको जो है 15-20 लीटर पानी में घोल लें और उसको पूरे खेत में जगह जगह आप इसको छिड़काव कर दें, बोतल से या जैसे भी। दूसरा होता है कि आप इसको पानी में घोल लें, उसको बालू में मिला लें और बालू को पूरे खेत में छिड़ दें, लेकिन पानी खेत में खड़ा होना चाहिए। ये तो प्रिटला क्लोर की बात हुई, जो इसकी मात्रा हमने आपको बताई। दूसरा होता है जो ब्यूटा क्लोर, पुराना खरपतवार नाशी है, इसको किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए और जो इसकी मात्रा होगी वो होगी 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़। आपका तरीका डालने का वही होगा, इसको किसान भाई को खेत में 3 से 5 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। अब दिक्कत किसान भाई के सामने क्या आती है कि हमारे पास जो खरपतवार नाशी है, ज्यादातर पिछले 10 साल का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो ज्यादातर किसान भाई जो है बिस्पेरीबैक सोडियम जो आता है, अलग अलग नामों से बाजार में आता है, रोपाई में भी उसी खरपतवार नाशी को इस्तेमाल कर रहे हैं और बुआई के बाद भी उसी में कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हुआ कि कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो इन खरपतवार नाशी से अब कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और उनके लिए हमको प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी डालना बहुत जरूरी है। तो इसको किसान भाई ध्यान में रखें कि आपको प्री इमरजेंस जो खरपतवार नाशी है, जिसमें हमने बताया कि रोपाई वाले धान में प्रिटला क्लोर और ब्यूटा क्लोर का डालना अति आवश्यक है। उसके बाद अगर आपके खेत में खरपतवार आते हैं तो आप 30 दिन पर बिस्पेरीबैक सोडियम जो आता है उसको लेकर के और उसकी 100 ml मात्रा 120 लीटर पानी में घोल करके आप उसका अपने खेत में छिड़काव करेंगे। इस चीज को किसान भाई ध्यान रखें। अगर आपको दिखाई देता है कि मेरे खेत में जो है ज्यादा खरपतवार है, इसमें चौड़ी पत्ती वाले भी हैं और जिसमें घास कुल के भी खरपतवार है और जो है नरकट भी है, जिसमें हम मोथा, जंगली मोथा, नागर मोथा, ये कई होते हैं इसको इसके हैं, तो आप जो है बिस्पेरीबैक सोडियम तो हमारा रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में एक पायरेजो सल्फ्यूरान आता है उसकी 60 ग्राम मात्रा को मिला करके आप छिड़काव करें। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा खरपतवार है तो आप इसके स्थान पर, पायरेजो सल्फ्यूरान के स्थान पर, आप जो है एक दूसरा खरपतवार नाशी आता है मेट सल्फ्यूरान क्लोरमीरान, इसको 4 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 100 ml बिस्पेरीबैक सोडियम के साथ मिला करके 120 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें। तो ये तो रोपाई वाले धान की बात हो गई कि खरपतवारों को हमें कैसे नहीं

0: करना है। अब हम बात करते हैं बुआई वाले धान में। आज से हम देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जनपद गोरखपुर में और आसपास के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां जहां धान होता है, बहुत बड़ी मात्रा में धान की सीधी बुआई हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले मैं कुछ ब्लॉक्स में सर्वे किया तो मैंने देखा कि 60 से 65% किसान जो है धान की सीधी बुआई की है। और जैसे मैंने शुरू में ही बताया, धान की सीधी बुआई में खरपतवार जो है ज्यादा उगते हैं। अगर समय से किसान भाई ने खरपतवार का नियंत्रण कर लिया तो धान की सीधी बुआई बहुत ही सफल रहेगी और आपकी लागत जो है कम से कम 12 से 15 हजार प्रति हेक्टेयर जो है कम हो जाएगी। सीधी बुआई में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए, इस पे ध्यान दें। जो किसान भाई सीधी बुआई किए हैं उन और उनको पहले तो काम ये करना चाहिए कि सीधी बुआई करने के बाद उसी दिन से लेकर के 48 घंटे के अंदर आपको पेंडामिथिलीन 30 EC की जो आती है उसकी 1.320
1: तैयार साल खरीफ में धान का फसल अच्छा होई, लागत भी कम आई, खर पतवार का समूल नियंत्रण हो जाए, एकरे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ देखा अपनी बैठकी में इतना निमन जानकारी भी ले लिया, पूरा हर मन मनसायन भी भाई,
3: बिल्कुल।
2: लेकिन समय इशारा कर रहल बा पंच भाई से विदा लेवे के, तब फिर मिले के पंचों जय जवान जय किसान।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। मुनीर, पिता का नाम मोहम्मद खलील, पता फुलवरिया थाना बेलहर कला जनपद संत कबीर नगर। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को सूचित करें। नीलम पुत्री फेरई साढ़े कला थाना महंगावाल संत कबीर नगर। ये शारीरिक रूप से विकलांग है। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को सूचित करें। रिंकी पुत्री मुंशी उम्र 20 वर्ष, पता बभनी थाना बेलहर कला संत कबीर नगर। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को सूचित करें। अंकिता देवी पुत्री सुरेश साहनी कुसौना कला थाना मेहंदावल जनपद संत कबीर नगर। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को सूचित करें। उषा देवी पत्नी पप्पू प्रसाद ढोड़ थाना मेहंदावल संत कबीर नगर। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को सूचित करें। सोनमती देवी पत्नी गिरीश बेलवनवा थाना बेलहर कला जनपद संत कबीर नगर। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और

0: वीडियो चैनल्स केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डीटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा में आज के कलाकार हैं चंद्रभान व उनके साथी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: के कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे चंद्रभान और उनके साथी हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी कार्यक्रम देश मार, इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं

0: भोजपुरी काव्य पाठ कवि हेमंत बहादुर गुप्ता।
1: देशवा हमार स्वाभिमानी जहाँ बहेला गंगा जी के पानी, गंगा जी के पानी हो, गंगा जी के पानी।

दिसवा हमार खत रा में पड़ी जाई, दिसवा हमार खत रा में पड़ी जाई। खंड खंड रहब तो देश कमजोर हो जाइए, मौका पाके दुश्मन ई जान लूटी खइए। गुलामी में बाजी जाइए आपन धरती माई, दिसवा हमार खत रा में पड़ जाई, दिसवा हमार खत रा में पड़ जाई। याद करे अपने शहीदन के वचनमा, कभी खंड होइए ना देश के जवनमा, कभी खंड होइए ना देश।

सपनवा दुश्मन करे लाले लकार हो, रोवेली धरती भी लखे आसमनवा सही न जालय त्याचार हो, रोवेली धरती भी लखे आसमनवा सही न जालय त्याचार।

धरती बी लखे असमनवा सही न जालया त्याचा आरो रोवेली धरती बी लखे असमनवा सही न जालया त्याचा आरो धानी जवानवा जिलाव टिके न येईले धरती के गोदिया में लसिया के धैले धरती के गोदिया में लसिया के धैले देशवा के

0: बी लखे असमनवा सही न जाला अत्याचार हो। धनी जवानवा जी लौट के न अइले धरती के गोदिया में लसिया के धैले देशवा के सेवा में जनवा गवा दियले सरहद पर बन के तूफान हो। रोवेली धरती बी लखे असमनवा सही न जालय अत्याचार हो। रोवेली धरती बी लखे असमनवा सही न जालय अत्याचार हो। सुतला जमनवा देखेला सपनवा दुश्मन कलेला लेल का आर हो। रोवेली धरती बी लखे असमनवा सही न जालय अत्याचार हो।
1: मंस बहादुर गुप्ता की भोजपुरी काव्य रचनाएं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश सम्मान में। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
3: गीतकार
1: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10

0: 5:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं पंजाबी लोकगीत

0: प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ
3: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
7: RBI कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
1: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
0: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
2: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब जो कि भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
3: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
4: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
5: स्टाम्प विभाग

0: एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम किस्ती बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था उसको हम निरस्त करते हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र के जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
2: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें 2 लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, तो यहाँ से रोहित यादव, 2 लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
1: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन

0: रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी,
1: हाँ,
5: आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
7: RBI कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
10: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
11: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
12: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
9: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
13: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
9: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
13: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
9: गाने के बोल,
13: गीतकार
9: और संगीतकार
13: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
9: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
13: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
9: गाते
13: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
9: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
14: फिल्म संगीत का ये पहला गीत, आइए सुनते हैं फिल्म मेला से मोहम्मद रफी की आवाज़।
15: मेले ये जिंदगी के मेले।
14: संगीत नौशाद का, गीत शकील।

फिल्म संगीत में आज आप सुन रहे हैं शकील बदायूनी के लिखे गीत। लीजिए अब सुनिए उमा देवी की आवाज में नौशाद की बनाई धुन पर ये गीत।

आइए सुनते हैं फिल्म बैजू बावरा का ये गीत। मोहम्मद रफी की आवाज और साथ में लता मंगेशकर की आवाज, संगीत नौशाद का गीत, शकील बदायूनी के फिल्म संगीत पे आप सुन रहे हैं शकील बदायूनी।

लीजिए फिल्म लीडर का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, नौशाद की धुन, शकील बदायनी का लिखा गीत।

0: फिल्म संगीत में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
2: गीतकार
0: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

फिल्म दो बदन। इस फिल्म के ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज, रवि की बनाई धुन, गीत

0: फिल्म दो बदन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं वार्ता, बढ़ते तनाव और घटती खुशियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर हरिओम मिश्र।
1: जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्व और अंतिम लक्ष्य के संबंध में विश्व इतिहास में सदैव ही दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक विचारधारा यह मानती है कि इस विश्व में सब कुछ क्षणभंगुर और नश्वर है, अतः इसके पीछे दौड़ना व्यर्थ है। विश्व को मिथ्या मानने वाली इस विचारधारा को हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। इसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा पाई जाती है वो भौतिकवाद से संबंधित है और इस विश्व को ही सत्य मानती है एवं जो कुछ भी संसाधन या सामग्री उपलब्ध है उसके सर्वोत्तम भोग पर बल देती है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में इन दोनों ही परस्पर विरोधी विचारधाराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में एक ओर धर्म और मोक्ष को स्थान दिया गया तो दूसरी ओर इस जगत के संचालन के लिए अर्थ एवं काम को भी वरीयता दी गई। साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास से सामाजिक विकास की ओर बढ़ने के लिए जीवन में विभिन्न प्रकार के संस्कारों का समावेश किया गया। भारतीय समाज की पूरी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की सभी अनिवार्य आवश्यकताएँ तनाव मुक्त वातावरण में पूर्ण हो जाएँ और यदि जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आएं, तो व्यक्ति अपने परिवार, पड़ोस, नातेदार इत्यादि के संपर्क से ही इन प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो जाए, क्योंकि समाज की संरचना में प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समर्पण इत्यादि आधार के रूप में स्थापित थे। परंतु पिछले कुछ दशकों या वास्तविक रूप से कहें तो अंग्रेजों के भारत में आने के बाद पश्चिमीकरण के रूप में एक नवीन विचारधारा का भारत में प्रसार होना प्रारंभ हुआ, जिसने भौतिकवाद को खुलेआम प्रश्रय दिया और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने भारतीय समाज को अपने आगोश में ले लिया। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप देश ने आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की, परंतु साथ ही भौतिक प्रगति की इस आंधी ने प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समर्पण, समता, सामूहिकता जैसे आधारभूत तत्वों को धीरे धीरे खत्म कर दिया और इनके स्थान पर व्यक्तिवाद एवं स्वार्थ को प्रश्रय दिया, जिसके चलते आज व्यक्ति धीरे धीरे मशीन के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है एवं समाज में चारों ओर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि भौतिक प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति अपने लिए भी खुशी के कुछ पल नहीं ढूंढ पाता। आज व्यक्ति के जीवन चक्र की सभी प्रमुख अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था तनाव एवं द्वंद्व से ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिए यदि बाल्यावस्था को लें तो जन्म के पश्चात लगभग 6 वर्ष तक बालक तनाव मुक्त जीवन जीता था। संयुक्त परिवार के बीच उसका आदर्श पालन पोषण एवं समाजीकरण होता था। मित्र मंडली एवं पड़ोस का उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था, परंतु अब धीरे धीरे इन चीज़ों से वह दूर होता जा रहा है, क्योंकि अब परिवार, पति पत्नी और बच्चों तक सिमटता जा रहा है। भौतिकता की चमक दमक ने पति पत्नी दोनों को कमाऊ बना दिया है। परिणामतः जन्म के पश्चात कुछ समय तक बच्चे को आया के संरक्षण में और फिर डे केयर होम में छोड़ा जाने लगा है। इसके पश्चात ज्यों ही वह अपने पैरों पर खड़ा होना प्रारंभ करता है, उसे ज्ञान की खोज में विद्यालय में छोड़ दिया जाता है। अब तो 3-3 साल तक के बच्चों का विद्यालय जाना

आम बात हो गया है और इन विद्यालयों में दाखिले के समय बच्चे और उनके अभिभावकों का इस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है जैसे बच्चा IAS के इंटरव्यू में बैठा हो। माता पिता भी दाखिले की इस प्रक्रिया को अपने मान सम्मान व प्रतिष्ठा से देखते हैं और बच्चे पर, जो अभी ठीक से खड़ा होना भी नहीं जानता, अपनी उम्मीदों का पहाड़ थोप देते हैं। अधिकांश बच्चों में तो दाखिले की इस प्रक्रिया के कारण विद्यालय जाने से पूर्व ही मस्तिष्क में विद्यालय के प्रति भय बन जाता है और वो पूरी पढ़ाई के दौरान इस भय से बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही अब बच्चे तनावयुक्त जीवन जीने को बाध्य हो रहे हैं। विद्यालय की बैग का बोझ और उस बैग से जुड़ी क्रियाकलाप तथा माता पिता की उम्मीदें कहीं ना कहीं बच्चों से उसका बचपन तो छीन ही रही हैं, अपितु उसे एक मशीनी जीवन की ओर ढकेल रही हैं। सुबह अलार्म घड़ी की आवाज़ के साथ उठने वाले आज के बच्चे घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, फिर विद्यालय का काम, फिर घर से ट्यूशन, फिर ट्यूशन का काम, मनोरंजन के नाम पर TV, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि से ऐसे घिर गए हैं कि धीरे धीरे भावना शून्य होते जा रहे हैं। जीवन की प्रारंभिक अवस्था की इस भागम भाग विद्यालय का बोझ व परीक्षा परिणाम की चिंता, माता पिता का पर्याप्त समय न मिलना इत्यादि के चलते आज के बच्चे तनाव से ग्रस्त नजर आते हैं और इसकी अभिव्यक्ति स्वरूप छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, माता पिता की बात न मानना, विद्यालय में अनुशासनहीनता इत्यादि हमें देखने को मिलता है। बाल्यावस्था के पश्चात बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जिसे बाल मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, जिसमें बच्चे के मन मस्तिष्क में संघर्ष और विरोध चरम पर होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्येक वस्तु के बारे में स्वयं निर्णय लेना चाहता है तथा अपनी एक अलग विचारधारा बनाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे को परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, परंतु इसके विपरीत वह यह पाता है कि सभी लोग भौतिकवादी चीज़ों के संग्रह में लिप्त हैं और उससे भी इन चीज़ों के संग्रह की उम्मीद करते हैं। अतः इस अवस्था में भी वह लोगों की उम्मीदों के पहाड़ों के नीचे दब सा जाता है और असफलता के भय के बीच तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। किशोरावस्था के पश्चात बच्चा युवावस्था में प्रवेश करता है, जहां उसे अब स्वयं के परिवार को बसाना होता है तथा आत्मनिर्भर बनते हुए रोजी व रोटी की व्यवस्था करनी होती है। इस अवस्था में भी भौतिकता की प्रधानता सर्वोपरि होती है, क्योंकि पहले जहां विवाह में संस्कार प्रमुख होता था, तो वहीं अब दिखावापन व दहेज प्रमुख हो गया है। जीवन साथी के चयन में पैसा निर्णायक बनता जा रहा है, साथ ही साथ रोजगार के चयन में भी पैसे को वरीयता दिया जाता है। व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है वह कार्य न करके उस कार्य को करता है जिसमें पैसा अधिक हो। इस प्रकार भौतिकता के प्रभाव में न तो मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और न ही रोजगार। ये दोनों ही चीज़ें व्यक्ति को आजीवन तनाव देती रहती हैं, क्योंकि इनका आधार ही स्वार्थ होता है। आज विवाहेतर संबंध, तलाक, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज हत्या, भ्रष्टाचार इत्यादि का एक प्रमुख कारण योग्य जीवन साथी का अभाव व मनोनुकूल रोजगार का न मिलना है। युवावस्था के बाद व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है और अब वह स्वयं में माता पिता की भूमिका में होता है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति भौतिक जगत में इतना लिप्त हो जाता है कि वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में जिस तनाव का अनुभव कर चुका होता है, उससे बाहर निकलने के बजाय अपने बच्चों को भी उसी जीवन प्रणाली का हिस्सा बनाने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पाता है कि समाज भी इसी प्रकार की जीवन प्रणाली की उम्मीद करता है। प्रौढ़ावस्था के पश्चात व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, जहां वह दादा दादी, नाना नानी इत्यादि भूमिकाओं में होता है और इस अवस्था में उसका जीवन की वास्तविकता से संपर्क होता है, क्योंकि उसकी उम्र
अब ढल चुकी होती।

0: रोजगार से सेवानिवृत्त हो गया होता है, पराश्रितता बढ़ती जाती है, परिवार के प्रेम की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन उसके बच्चे अपने भौतिकता की चमक धमक में उसे अपने साथ रखने के बजाय वृद्धाश्रम में रखना अधिक बेहतर समझते हैं। और इस अवस्था में स्वयं को पाकर जहां व्यक्ति में तनाव चरम पर होता है, तो वहीं उसे एहसास होता है कि वास्तव में जो भौतिक चमक धमक है वह एक सीमा तक तो उचित है, लेकिन उसके पीछे पागल होना मानव की सबसे बड़ी भूल और तनाव का प्रमुख कारण है। इस प्रकार भौतिकतावाद के प्रभाव में आज व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चक्र तनाव से बढ़ता जा रहा है और व्यक्ति के जीवन से खुशियां घटती सी जा रही हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए भौतिक सुख सुविधाएं एक साधन के रूप में हैं जिनसे हमारा जीवन सरल बनता है, लेकिन धीरे धीरे मानव भौतिक सुख सुविधाओं को ही साध्य बनाता जा रहा है और इसका परिणाम है कि व्यक्ति तनाव, चिंता, गुस्सा, सिरदर्द, हताशा, अनिद्रा इत्यादि विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त नजर आ रहा है। अतः इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति वैचारिकी में परिवर्तन लाए और संतोष की भावना का विकास करते हुए स्वयं के लिए समय निकाले एवं परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली इत्यादि के साथ प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों के साथ रहते हुए दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी खुशियों को सहेजने का प्रयास करे व तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करे।
1: हिंदी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वार्ता बढ़ते तनाव और घटती खुशियां। वार्ताकार थे डॉक्टर हरिओम मिश्र। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रसारण FM 14.1 मेगा हर्ट्ज़ के साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: जिंदगी बहुत
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: इन। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जगजीत सिंह की गाई इस गजल से, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था।

अभी आपने जगजीत सिंह की गाई गजल सुनी, आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की गाई ये गजल। शिकवे भी हजारों हैं, शिकायत भी बहुत है, फिर भी इस दिल को उससे मोहब्बत भी बहुत है।

0: सुगम संगीत में वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
4: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें

0: नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये सुनते हैं गुलाम अली की गाई ये गजल, तुझे क्या खबर मेरे हम सफर, मेरा मरहबा कोई और है, मुझे मंजिलों से परहेज है, मुझे रास्तों से मेरा रास्ता कोई और है।

प्रोग्राम के आखिर में ये सुनते हैं एक बार फिर जगजीत सिंह को। दूर तलक वीराना है, फिर भी चलते जाना है।

0: मिट्टी भी है सोना भी, दिल एक खजाना है। जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी।

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते

0: के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के

0: और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: अधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard.

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास

0: और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धन राशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
0: जी।
1: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी
0: हैं।
1: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज

0: देने थे, और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें 2 बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: आपने जो प्रश्न पूछा इसके 2 भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई, क्योंकि ब्रांडिंग की जब

0: बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
1: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।
0: जी, हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
0: जी
1: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे सीजीटीएमएससी का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
0: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान।
0: जी,
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
1: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमईज के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने

0: बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
2: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस लिहाज से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट है, वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफ़ॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
1: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
3: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: और जो एक्सपर्ट साहब हैं उनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे MSME होती है नए, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज इनमें MSME में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं इनमें से उनके और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस

0: तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफ़ी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
2: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
2: जो लघु ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं। और हमारे MSMEs जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि MSMEs की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएँ हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हुआ है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
3: हेलो
1: जी। हाँ, अपना सवाल पूछें।
3: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
3: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
3: एक्चुअली में हमारा ना बुटीक है
1: जी
3: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे मैंने बताया कि

0: हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है। तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है, और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर
1: जी
0: सकें, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाएँ बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं? रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलेंट्री है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है, जिसके अंदर हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं
1: जी
0: और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहाँ पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना
0: जी
1: शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके
1: जी
0: हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको
1: जी जी
0: जानकारी।
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य,

साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

फिल्म संगीत का ये पहला गीत फिल्म बादशाह से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, गीत समीर के, संगीत अन्नू मलिक का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी का ये गीत, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, अनवर सागर के बोल, जतिन ललित की बनाई धुन।

आइए सुनते हैं फिल्म फना का ये गीत शान और कैलाश खेर की आवाज में, प्रशून जोशी के बोल, जतिन ललित की बनाई धुन।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म बरसात का ये गीत। आनंद राज आनंद की धुन, देव कोहली के बोल।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के गए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित अजय चक्रवर्ती का ठुमरी गायन। बोल है, जाओ मोरी बैया ना मरोरो गिरधारी।

आइए एक बार फिर सुनते हैं पंडित अजय चक्रवर्ती को। बोल हैं गोरी धीरे चलो, गगरी छलकत ना जाए।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे पंडित अजय चक्रवर्ती। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण

0: तरण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Somesharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition, and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aprajita Snatak, Akashwani News, Delhi.
1: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached to 60,000 crore rupees. This undertaking shows the center's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyze institutional capital into the country. The West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly today. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for anti-social activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy set for a phased 4-year rollout starting from 1st of next month. India today strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. The MET also further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
4: Medium wave 330.03 meter, yani 909 kilohertz per. तथा FM 14.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 और 12 सेकंड हो रहे हैं। यहीं पर संपन्न होती हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुभरात्रि। जय हिंद।